103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े

0: अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards
2: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

जो मनुष्य क्षमा करना जानता है ऐसे व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। मन में क्रोध और शिकायत रखने से केवल दुख बढ़ता है, जबकि क्षमा मन को मुक्त कर देती है और जीवन को आनंद से भर देती है। इसलिए अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा से बड़ा और कोई दान नहीं है। क्षमा करने से हमारे भीतर किसी के लिए बुरे भाव नहीं रहते और हमारा मन शांत रहना सीखने लगता है।

चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे गौरी नंदन गणेश जी की इस वंदना के साथ। सभी मांगलिक कार्य को पूर्ण करने वाले गजानन हमारी मंगलमय जीवन को और भी शुभ बनाएं।

शिवशंकर भोलेनाथ जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनकी जटाओं में गंगा जी का वास है, ऐसे महादेव सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं।

इस संसार में सबसे बड़े भक्तों में सर्वप्रथम नाम लिया जाता है श्री हनुमान जी का, जिन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम सब मिलकर उनकी आराधना करें।

श्रोतो, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दे हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम, जबकि 7:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे सुबह 8:00 समाप्त 4 प्रभात में, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। लोक संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर, और 9:10 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे गीतों का कारवां कार्यक्रम, और 10:30 पर सुनिएगा पहाड़ों के सुर कार्यक्रम। 11:05 पर आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों के कार्यक्रम, जबकि 11:30 पर आप सुन पाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:00 हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम, जबकि सुनो सखी कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का। प्रादेशिक समाचार

किसान बागवान साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी 7:10 पर। रात्रि 8 बजे सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और 9 बजे आप सुनेंगे News@9। पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे महेंद्र कपूर के गाए कुछ गीत। 9:30 पर आनंद लीजिए धाम गीतादि कार्यक्रम का। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विजय दशमी तः प्रवर्तिष्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य शत प्रतिशतं निर्यातेभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः शुल्क मुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पेभ्यः तथा हस्ततन्तु शिल्पकारेभ्यश्च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। एशिया क्रीडासु भारतस्य क्रीडकः ह्यः जापान देशस्य आइची नागोया नगरे षट् पदकानि विजितानि, येषु चत्वारि रजत पदकानि, द्वे च कांस्य पदके स्तः। पुरुषाणां 10 मीटर मितायाम् एयर राइफल स्पर्धायां हिमांशु ढिल्लो इत्यनेन रजत पदकं विजितं, रुद्रांश पाटिलेन च कांस्य पदकं प्राप्तम्। अस्याः एव प्रतियोगितायाः पुरुषाणां दल स्पर्धायामपि भारतेन रजत पदकं प्राप्तम्। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां सुचिका तारियाल इत्यनया 60 किलोग्राम मिते वर्गे कांस्य पदकं विजित्य अस्मिन् क्रीडा क्षेत्रे पदकं विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुरूप में यह पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में 2026 से 2029 के दौरान स्वापक नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI में इस वर्ष अगस्त में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में ये 5% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जबकि सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Marking a new chapter in India cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature, and writing on cinema, as part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting. The awards are being held outside the national capital. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार लिसनर्स। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। एक नया दिन, नई शुरुआत, नई बातें और साथ ही कुछ नई और अलग जानकारियां, यही सब लेकर आ गए हैं हम आज के सुबह सुहानी प्रोग्राम में, जिसे आज आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस सुविचार से। दोस्तों, इंसान का व्यवहार हमेशा उसके ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जहां हमारा ज्ञान विफल हो जाता है लेकिन हमारा व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है कि इतने विनम्र बनो कि कभी अगर हम असफल हो भी जाए तो लोग हमारी असफलता ना देखकर हमारे द्वारा दूसरों से किए गए व्यवहार को याद रखें, ना कि हमारी कमियों को। जी हाँ, ये लाइफ बेशकीमती है और इसे खुलकर मुस्कुराते हुए जिए। वेल, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम।

जी हाँ श्रोताओं, हमारी हर दिन यही कोशिश रहती है कि हमारे लिसनर्स की हंसते खिलखिलाते हुए और मुस्कुराते हुए उनकी हर दिन की हर सुबह की शुरुआत हो। फिलहाल आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम और यहाँ पर हम रुख कर रहे हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज आज के नाम की कुछ प्रमुख घटनाओं की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें 22 सितंबर 1792 में फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई। वहीं 1955 में 22 सितंबर के दिन ब्रिटेन में टेलीविज़न के व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई। इसमें प्रत्येक घंटे सिर्फ 6 मिनट ही विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति दी गई, जबकि रविवार सुबह से विज्ञापन चलाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। 22 सितंबर 1937 में स्वतंत्रता सेनानी का आखिरी जत्था अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा गया। 22 सितंबर 1539 की अगर बात करें तो इस दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का निधन हुआ। वहीं मराठी व हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे आज ही के दिन इस संसार से अलविदा लेकर चली गई। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास शख्सियतों के बारे में। तो आपको बता दें 22 सितंबर 1869 को भारत के महान समाज सुधारक वी एस श्रीनिवास शास्त्री का जन्म हुआ, जिनके बारे में आगे प्रोग्राम में हम विस्तार से बातें करने वाले हैं। इसके अलावा साल 1989 में भारतीय समाचार वक्ता रोहित सरदाना का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा आज हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, उनमें से अगर किसी का जन्मदिन हुआ है या फिर आज किसी की एनिवर्सरी है, तो हमारी ओर से उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही साथ उन सभी के लिए प्ले कर रहे हैं ये बेहद ही प्यारा सा गाना। एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। सुनते रहिए प्रोग्राम सुबह सुहानी, जहाँ ढेर सारी जानकारियाँ और भी हैं आप सभी से साझा करने के लिए। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं इस वक्त सुबह सुहानी प्रोग्राम। और अब बात करते हैं, आज हम मना रहे हैं वी एस श्रीनिवास शास्त्री जी की जयंती। जी हाँ, इनका ये एक प्रमुख भारतीय उदारवादी राजनीतिज्ञ, वक्ता, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 22 सितंबर 1869 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। इनके द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। इनकी विशेष पहचान अंग्रेजी भाषा पर अधिकार व उत्कृष्ट वक्ता के रूप में हुई। महात्मा गांधी इन्हें अपने बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनमें शामिल है लेक्चर ऑन द रामायण, लाइफ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश फ्लैग जैसी प्रमुख रचनाओं के लिए इन्हें याद किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इनके द्वारा लीग ऑफ नेशन में भारत के प्रतिनिधित्व किया गया। इसके अलावा यूके की प्रिवी काउंसिल के ये सदस्य रहे और दक्षिण भारत में भी इन्होंने एक एजेंट के रूप में काम किया। वेल प्रोग्राम में और भी ढेर सारी जानकारियां हम आपसे यूं ही साझा करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको यूं ही जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर और सुनते रहना होगा सुबह सुहानी प्रोग्राम।

सुबह सुहानी कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और देखिए समय हो चुका है सुबह के 7:25:50। जी हाँ, इस वक्त हम आप सभी को रूबरू करवाने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को भारत के सबसे बड़े समूह का नेतृत्व जारी रखने के लिए बोर्ड का समर्थन उन्हें प्रदान किया गया है। वहीं बात करें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की बढ़ती सेमीकंडक्टर ताकत को लेकर साइबर हमलों और संभावित बाधाओं के प्रति उद्योग को आगाह किया गया है। बात करें खेल जगत की, तो आपको बता दें कि भारत ने अब तक एशियाई खेलों में की प्रतियोगिताओं में 6 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें की 4 सिल्वर मेडल्स और इनमें 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। निशानेबाजी की अगर हम बात करें, तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जो है वो भारत में सिल्वर मेडल दिलवाया है। और इसके अलावा व्यक्तिगत स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया है। बात करें हॉकी की, तो भारतीय महिला टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को 17-1 से बड़े अंतर के साथ उन्हें हराकर जो है वो जीत हासिल की है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें दीपिका, ऋतुजा और नवनीत ने शानदार हैट्रिक लगाई। इसके अलावा पुरुष टीम ने भी इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। जी हाँ, कुछ ही पलों में हम लौटने वाले हैं आपके लेकर मौसम की कुछ खूबसूरत सी जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे ये प्यारा सा गीत। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए प्रोग्राम सुबह सुहानी।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और अब प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। जी हाँ, आपको बता दें कि आज देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम मिला जुला सा रहने वाला है। और बात करें दक्षिण पश्चिमी और पूर्वोत्तर के हिस्सों की, तो यहाँ पर बारिश के आसार जताए गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में धूप खिलने की बात की गई है। जबकि हिमाचल के आज के मौसम की हम बात करें तो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि मैदानी और निचले इलाकों में दिन भर धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। जबकि बात करें शिमला और खासकर धर्मशाला की, तो यहाँ सुबह शाम की हल्की मीठी मीठी सी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और मौसम बेहद ही खास बना हुआ है। और ऐसे मौसम में सभी जो है वो खुशनुमा सा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस बदलते मौसम में आप सभी को एक ही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें। जब कभी भी आपको समय मिले तो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठें, और ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर हम है ना आप सभी का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ से प्ले करते हैं कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत। तो ऐसे ही एक और गाना आइए गुनगुनाते हैं हम और आप एक साथ मिलकर।

0: जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल इस कार्यक्रम को इसी वक्त सुनना ना भूलें।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं शुभ व्याग कार्यक्रम।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग। अभी आपने सुना जगदीश शर्मा व साथियों की आवाज में लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं जयश्री शर्मा व साथियों की आवाज में।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणाखुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा 2रा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया

0: जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
2: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
3: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
4: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जाँच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
5: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
4: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
6: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
4: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
7: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड में भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honour the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. Our report.
10: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: counter-attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं और यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिमाचली लोकगीत। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लेखराम पाल की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ।

श्रोता, हिमाचली लोकगीतों में एक अपनापन और पहाड़ी संस्कृति की वो झलक है जो हमें इन लोकगीतों से जोड़े हुए रखती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: गर्भावस्था के चौथे से छठे महीने में, तीसरी जांच गर्भावस्था के सातवें से आठवें महीने में, चौथी जांच गर्भावस्था के नौवें महीने में।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: शुद्ध आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
2: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
1: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
2: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
3: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत। श्रोतो, जब कभी भी लोकगीतों की मधुर धुन हमारे कानों में गूंजती है तो मन यूं ही झूमने लगता है। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं सरिता बुशहरी की आवाज में।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Sporty look, standard 6 airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. Ye hai epic new Maruti Suzuki Swift Petrol. Ab paye powerful Z series engine ke saath, jo har drive ko banaye mazedar aur economical. Aur ab milega total benefit up to ₹35,000. Style, safety aur savings sab ek hi package mein. To der kis baat ki? Apne nazdeeki Maruti Suzuki Arena showroom par aaj hi visit kijiye aur Swift Petrol ghar laaye. Jaldi kijiye kyunki kimaton mein 20,000 rupees tak ki badhotri jald hone wali hai. TNC apply.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: श्रोतो, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं हिमाचली लोकगीत कार्यक्रम का अगला लोकगीत। आइए सुनिए मंजू भारद्वाज साथियों की आवाज में।

शुद्ध इसी लोकगीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। जी हाँ श्रोतो, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत, और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी जासूस फिल्म के इस गीत के साथ।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
2: जी हाँ श्रोता, बने हुए हैं आप इस वक्त आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गॉव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
3: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमलीजामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी जी।
3: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
1: जी।
3: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
3: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे उस मुहिम के, वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा।
1: जी,
3: तो
1: जी,
3: जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना

0: ना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के जमाने में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
0: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य से। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
0: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में, एक योजनाओं में, एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओं, यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख मैं याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहां पर सुरेश जी हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया।
0: बिल्कुल, देखिए याद रखिए आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
1: जी,
0: 2 अक्टूबर
1: जी।
0: और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होके हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे
1: जी,
0: एक
1: जी,
0: एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहाँ सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में, लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है
1: जी।
0: तो मैं समझता हूं कि एक जागरूकता
1: जी
0: जनता के अंदर पैदा भी हुई है।
1: सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आई। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा। और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। यहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे गिव इट अप अभियान, यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं। राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहां पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
2: देखिए, आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि विज्ञापन कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना LPG गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो PNG के इस दौर में, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, यहाँ भी घर घर PNG की पाइप बिछ गई है और लोग PNG का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता भी, सौर्यता भी आई है और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी धुआं से आजादी मिले, कि सेहत सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है और जिसका परिणाम यह है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
0: सुरेश जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना, जो खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके TB जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था
1: जी,
0: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक LPG की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा PNG के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है कनेक्शन मिल गए, जिसके बाद LPG की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए
1: जी।
0: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था
1: जी, जी।
0: हम एडिशनल भी हमने एक ले लिया था क्योंकि
1: जी, जी।
0: कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से PNG आया, घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा
1: जी, जी,
0: तब जाके जो है ये होगा
1: जी, जी।
0: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था
1: जी।
0: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि PDS की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं
1: जी, जी, जी,
0: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी जी, बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए। इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है, उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
1: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ मन की बात कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में
1: जी।
0: तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे। अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया
1: जी।
0: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आम तौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन। वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है?
2: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं, यह नोटिसेबल है, मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात

0: के अंदर अभी 133 एपिसोड उनका हो गया है
1: जी
0: और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा
2: बिल्कुल,
1: आपको?
2: देखिए इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है।
1: जी
2: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो
1: बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल
2: अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र। तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
1: जी, जी,
2: आज
1: जी।
2: जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, उससे और का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके। तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था। यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
2: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
2: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
2: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति है उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई, आम जनता उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: उनको
1: बिल्कुल।
2: मान्यता देना
1: हुँ।
2: उनका जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
2: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है
1: बिल्कुल,
2: तो
1: बिल्कुल।
2: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कह लें के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
0: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहां जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए ये अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे?
2: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
1: एक किया पूरे भारत वर्ष,
2: पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
1: बिल्कुल
2: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिये, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल के प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
1: लोग जीवन में बसे हुए हैं,
2: ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करके।

0: लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं।
1: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है, उसका निश्चित ही कारण।
0: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद।
0: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:45

103.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 9:50 होने को है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार। ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए शिमला पुलिस को सराहा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधु पालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत देगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का

0: बदले की भावना से कार्य कर रही सुक्खू सरकार। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने MIS के तहत सेब का खरीद मूल्य बढ़ाने की राज्य सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सिनेमा में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के सिनेमा जगत के शीर्ष सम्मानों में गिने जाते हैं और फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा से जुड़ी प्रतिभाएं भाग लेंगी। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को भी वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और ड्रग तस्करों व उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने व मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित लगभग 4,13,00,000 रुपये की संपत्ति को जब्त करने के प्रयासों के लिए शिमला पुलिस की सराहना की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 15 NDPS मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से संबंधित 12.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस से ड्रग माफिया और अवैध ड्रग कारोबार की आर्थिक नींव को कमजोर करने के लिए इसी तरह की केंद्रित कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम राज्य सचिवालय में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे डेंटल कॉलेज शिमला की फैकल्टी और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधुमक्खी पालकों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत राशि प्रदान की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बागवानी मंत्री ने कहा कि कांगड़ा, बंडी, नागण, फट और कल्याणा क्षेत्र में बिट्टल के कारण मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को शहद का विपणन बिग बास्केट के माध्यम से करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रावधान किया गया है। नई नीति में पारंपरिक रटने की बजाय समझ, रचनात्मकता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। मंडी जिले के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि स्नातक स्तर से ही उन्हें शोध और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थियों को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि स्नातक स्तर से ही उन्हें शोध और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य पढ़ाई को अधिक लचीला, शोधपरक और विद्यार्थियों के भविष्य की जरूरतों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी 3 वर्ष में स्नातक डिग्री पूरी कर सकते हैं जबकि 4वें वर्ष में ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प मिलेगा। नई व्यवस्था में अब 1 वर्ष के बाद UGC प्रमाण पत्र और 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद UGC डिप्लोमा कर पढ़ाई छोड़ने और बाद में आगे बढ़ने की सुविधा भी है। सबसे बड़ा विकल्प 4वें वर्ष में दिखाई देगा। ऑनर्स विद रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को 8वें सेमेस्टर में शोध परियोजना या डिसर्टेशन पूरा करना होगा। उन्हें PhD धारक शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ, वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में देरी करने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश में सेब की एमआईएस खरीद दर बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। ठियोग से कांग्रेस विधायक और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से एमआईएस के तहत सेब की खरीद दर 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलो करने की मांग की है। राठौर ने कहा कि बढ़ती मजदूरी, खाद, उर्वरक, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड की कीमतों के साथ मौसम की मार ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में एमआईएस के तहत सेब की खरीद बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में 12 रुपए प्रति किलो की एमआईएस दर बागवानों के लिए पर्याप्त नहीं है। कुलदीप राठौर ने एमआईएस के तहत लंबित भुगतान जल्द जारी होने की उम्मीद भी जताई।
5: योजना के अंतर्गत जो सेब लिया गया था उसका काफी भुगतान भी हुआ है, लेकिन अभी कुछ भुगतान होना बाकी है। कई बागवान जिन्होंने ऋण ले रखे हैं, ऋण अदायगी में समस्या आ रही है, वो इस स्थिति में नहीं है कि ब्याज की राशि लौटा सके। तो हमें उम्मीद है कि सरकार उस पैसे को भी रिलीज करेगी और जो हमारी ये मांग है एमआईएस को बढ़ाने को लेकर, उस पर भी सरकार विचार करेगी।
0: लाहौल स्पीति में वन अधिकार अधिनियम 2006 और नौ तोड़ भूमि के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक और भाजपा नेता रवि ठाकुर ने प्रदेश सरकार से इन विषयों पर अपनी स्पष्ट नीति जनता के सामने रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है और इस कानून के तहत हर व्यक्ति को स्वतः भूमि आवंटित नहीं होती, बल्कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। रवि ठाकुर ने सरकार से नौतोड़ पर पारदर्शी नीति बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को राज्यपाल और केंद्र सरकार के समक्ष भी प्रमुखता से उठाएंगे। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, एकल महिलाओं और विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक हर माह मिलेंगे 1,000 रुपए। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक मिलेगी सुख शिक्षा की छांव। वीसी नियुक्ति को लेकर सरकार व लोक भवन के बीच टकराव शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है, सुक्खू सरकार के नए कानून को दरकिनार कर राज्यपाल ने शुरू कर दी उप कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया। दैनिक भास्कर के अनुसार, पेपर खुलने से लेकर कॉपियां जमा होने तक होगी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया एग्जाम मित्र ऐप। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार। ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए शिमला पुलिस को सराहा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत देगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, बदले की भावना से कार्य कर रही सुक्खू सरकार। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने एमआईएस के तहत सेब का खरीद मूल्य बढ़ाने की राज्य सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
6: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
7: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
6: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
7: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चाइना गेट फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसमें संगीत अनु मलिक का है। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, शंकर महादेवन और विनोद राठौड़। गीत लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं माचिस फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार है हरिहरन और सुरेश वाड़ेकर, गीतकार गुलजार।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म एयरलिफ्ट से ये गीत। गायक कलाकार है अरिजीत सिंह।

0: श्रोता कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म से ये गीत।
1: जब से
0: गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल, संगीत बीके प्रसाद का है और गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोता, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म जोली LLB 2 से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति नरोत्तम कुमार की आवाज में।

जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।

हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ओम प्रकाश व साथियों को आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले लोकगीत में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और ड्रग तस्करों व उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने व मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित लगभग 4,13,00,000 रुपए की संपत्तियों को जब्त करने के प्रयासों के लिए शिमला पुलिस की सराहना की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से संबंधित 12.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम राज्य सचिवालय में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे डेंटल कॉलेज शिमला की फैकल्टी और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे।

0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में देरी करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रावधान किया गया है। नई नीति में पारंपरिक रटने की बजाय समझ, रचनात्मकता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। मंडी जिले के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि स्नातक स्तर से ही उन्हें शोध और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थियों को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि स्नातक स्तर से ही उन्हें शोध और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य पढ़ाई को अधिक लचीला, शोधपरक और विद्यार्थियों के भविष्य की जरूरतों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी 3 वर्ष में स्नातक डिग्री पूरी कर सकते हैं, जबकि 4थे वर्ष में ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प मिलेगा। नई व्यवस्था में अब 1 वर्ष के बाद UGC प्रमाण पत्र और 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद UGC डिप्लोमा लेकर पढ़ाई छोड़ने और बाद में आगे बढ़ने की सुविधा भी है। सबसे बड़ा विकल्प 4थे वर्ष में दिखाई देगा। ऑनर्स विद रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को 8वें सेमेस्टर में शोध परियोजना या डिसर्टेशन पूरा करना होगा। उन्हें PhD धारक शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधुमक्खी पालकों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत राशि प्रदान की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बागवानी मंत्री ने कहा कि कांगड़ा, बंडी, नागण, फट और कल्याणा क्षेत्र में बिट्टल के कारण मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में सेब की MIS खरीद दर बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। ठियोग से कांग्रेस विधायक और AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से MIS के तहत सेब की खरीद दर 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलो करने की मांग की है। राठौर ने कहा कि बढ़ती मजदूरी, खाद, उर्वरक, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड की कीमतों के साथ मौसम की मार ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में MIS के तहत सेब की खरीद बढ़ानी चाहिए।
2: योजना के अंतर्गत जो सेब लिया गया था उसका काफी भुगतान भी हुआ है, लेकिन अभी कुछ भुगतान होना बाकी है। कई बागवान जिन्होंने ऋण ले रखे हैं, ऋण अदायगी में समस्या आ रही है, इस स्थिति में नहीं है कि ब्याज की राशि लौटा सके। तो हमें उम्मीद है कि सरकार उस पैसे को भी रिलीज करेगी और जो हमारी ये मांग है MIS को बढ़ाने को लेकर उस पर भी सरकार विचार करेगी।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल चंबा में उपचार के दौरान हुई 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत मामले में गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मेडिकल कॉलेज चंबा के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लक्ष्मी देवी के गाए इस लोकगीत के साथ।

अंकुश संदल को अभी आपने सुना इस लोकगीत में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पूनम शर्मा और सपना कुमारी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
3: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
3: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
3: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
3: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओ, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
3: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे, 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
3: लेकिन श्रोताओ, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
3: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
2: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
3: हटिए सामने से। खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
2: जी,
3: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
2: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
3: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
2: जी,
3: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
2: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
3: आशुताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
2: जी,
3: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
2: जी,
3: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
2: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
3: तो श्रोताओ, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
2: जी,
3: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
2: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
3: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
2: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
3: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
2: जी,
3: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
2: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए।

0: आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते
2: मित्रों संग आनंद मनाते
3: कभी दौड़ना और उछलना
4: कभी गेंद के खेल खेलना
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें
3: गिल्ली डंडा सबको भाता
4: सतोलिया भी मजा दिलाता
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना
4: या हंस हंस के बातें करना
3: जब अंधेरा होने लगता
4: सबको कुछ डर लगने लगता
3: तब हम घर को वापस आते
4: कल खेलेंगे यह कह जाते
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट टू यू बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग
1: दीक्षा दीक्षा फॉर एम्पावरिंग एजुकेशन।
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
6: अरे उठो, अरे उठो, उठो, अरे उठो,
7: उठो, उठो,
6: अरे उठो,
4: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
6: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
8: अच्छा।
6: हाँ। परियां परियां नाच रही थी। और हाँ हाँ खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
4: दूसरे ने कहा,
8: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा

0: पर जाकर भी मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
0: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खाए तू? ऐसे
2: ये सुनकर दोनों

0: मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
1: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
2: नहीं खाता, तू क्या करता? अपनी जान से हाथ धोता?
3: तुम झूठ बोलते हो।
1: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
2: जगाता कैसे? तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
0: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
4: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं परदेश फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, शंकर महादेवन और आदित्य नारायण ने। गीत के लिए संगीत नदीम श्रवण ने दिया है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अलगय अग्निगौर कुमार सानू की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से ये गीत। गीत के लिए संगीत नदीम श्रवण ने दिया है और गीत लिखा है समीर ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म करण अर्जुन से, आवाजें हैं लता मंगेशकर की। गीत के लिए संगीत राजेश रोशन का है और गीतकार हैं इंदिवर।

जीत फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर है, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत लिखा है समीर ने।

सैनिक साथियों, कार्यक्रम के आखिरी में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से ये गीत। धुन बनाई है जतिन ललित ने और गीत गाया है उदित नारायण और अनुराधा वाडवाल ने। गीतकार हैं समीर।

इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी।

0: स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, मंगलवार के इस खूबसूरत सफर में एक बार फिर से हाजिर हैं हम, और आज मैं हूँ आपके साथ आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मंगलवार का ये खूबसूरत सफर और खूबसूरत हो जाता है जब हमारी सखियाँ हमें करती हैं फोन कॉल्स, बातें भी करती हैं और साथ ही साथ सुनती हैं अपनी पसंद के गीत उन फिल्मों से जिन्हें हम आपके लिए चुनकर लेकर आते हैं। तो बता देते हैं सखियों, हमारी आज की फिल्में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्में हैं आदमी खिलौना है, अजनबी, बादशाहो, बर्दाश्त, बेटा, सैनिक, सनम बेवफा, ताल, तुम बिन और तुमसे अच्छा कौन है। तो यह सखियो हमारी आज की फिल्में, और जल्दी से आपको बता देते हैं हमारे स्टूडियो का नंबर भी जो आपको डायल करना है। नंबर वही जाना पहचाना है 01892224391। जी हाँ, 01892224391। और कार्यक्रम में सखियो जब भी आप कॉल करें तो सिग्नल का ध्यान रखें ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, सखियों के लिए है, तो वे ही फोन करें। लेते हैं हमारे कार्यक्रम की पहली फोन कॉल। हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते,
1: मैं साक्षी बोल रही नूरपुर से।
0: जी साक्षी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, बताओ।
0: जी हम भी बहुत
1: आपसे बात हो रही है, मैं बिल्कुल अच्छी हो गया वो।
0: अच्छा, और
1: आपसे बात करके इतना अच्छा लगता ना, मूड भी ऑफ हो तो मूड भी अच्छा हो जाता है, ऐसे फ्रेश हो जाता है मूड मेरा।
0: जी बहुत अच्छी बात है साक्षी,
1: आपसे बात करके।
0: और आप हमारी नियमित श्रोता है, हमें फोन करती रहती है, है ना?
1: हाँ जी, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। और बताइए क्या कुछ कर रही थी आज?
1: कुछ नहीं, बैठी थी, इंतजार कर रही थी वे कार्यक्रम कब लगे, कब शुरू होए। कुछ दिन तो आपसे बात नहीं हो पाई ना, और खराब भी थी ना, इसलिए नहीं हो पाई। मैं तो ऐसे ही रही उस दिन, तो मेरा मूड तो ऐसे ही रहा ना।
0: चलिए, कई बार खराबी भी आ जाती है।
1: क्या था मेरा मूड?
0: जी बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है साक्षी की खराबी आ जाती है, तो कोई बात नहीं,
1: खराबी आ जाती है ना।
0: आज खुश हो जाइए आप।
1: हाँ जी, पता नहीं कैसा रिश्ता जुड़ गया ना मेरा आपसे, कि आपसे बात नहीं हो तो मेरा तो मूड ऐसे खराब होता है जैसे।
0: तो मूड आप साक्षी मूड खराब ना किया करें हम। चलिए, बात नहीं भी हो पाती है तो हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, है ना, आपका मनोरंजन करवाते रहते हैं।
1: जी
0: साक्षी, आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही है?
1: तुम बिन फिल्म का।
0: तुम बिन फिल्म का कौन सा गीत?
1: कोई अच्छा सा, कोई अच्छा सा सॉन्ग चला दीजिए जिससे मेरा मूड भी फ्रेश हो जाए और मैं खुश हो जाऊं।
0: अच्छा,
1: और आप भी खुश ही रहना।
0: जी बिल्कुल, हम
1: आप खुश होंगे तो हम भी खुश रहेंगे।
0: और साक्षी हम तो खुश ही रहते हैं, है ना, और आप सब श्रोता जब साथ में होते हैं तो खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है, और इस खुशी को और बढ़ाते हैं तुम बिन फिल्म।
1: मैंने तो कभी

0: जस्ट आपसे बात कर रही।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी भावुक हो रही हैं।
0: ऐसा सोचा नहीं होता ना, वो काम हो गया मेरे साथ।
1: बिल्कुल साक्षी, इस खुशी को बनाए रखिए और सुनिए तुम बिन फिल्म का ये गीत। धन्यवाद कॉल के लिए।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं पहचान लिया, आप छोड़िए, नाम को क्या रखा है नाम में।
0: जी, नाम में हमारी पहचान रखी है और आपकी पहचान बहुत ज़रूरी होती है ना?
1: आपने मैम पहचान लिया ना, बस हमारे लिए यही बड़ा काफी है कि आपने
0: जी,
1: हमारी आवाज पहचान ली।
0: तो
1: अब
0: श्रोताओं को भी अपना नाम बता दीजिए।
1: तो मैं श्रोता भी जान के होंगे, धीरे धीरे उनको भी आदत होगी अब मेरी आवाज
0: जी,
1: की।
0: बिल्कुल। चलिए, आज पहेलियां आप
1: नहीं
0: बुझा रही हैं, नहीं बताना चाह रही हैं मुझे लगता है।
1: नहीं बता देती मैम, आप बोलो और मैं अपना नाम ना बताऊँ, ऐसा हो सकता है
0: जी
1: मैम? मैं इंदु बात कर रही हूँ इंदौरा से।
0: जी कहिए इंदु,
1: और
0: इंदौरा के क्या
1: सुनाइए
0: हाल
1: मैम,
0: चाल हैं आज?
1: कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, आप तो बरसात चली गई, अब थोड़ा ठंड का मौसम हो गया है।
0: जी हाँ,
1: हाँ
0: बरसात चली गई है ना?
1: हल्की
0: हल्की हल्की सी
1: हल्की हो रही,
0: ठंडक लग
1: हाँ जी
0: रही
1: हाँ
0: है
1: जी मैम,
0: सुबह शाम।
1: हाँ जी सुबह तो थोड़ी कम है, तो शाम को थोड़ी हो गई है, मतलब कि बाहर घूमने में ठंडी हवा है, तो धर्मशाला की ठंडी हवा हमारे इंदौरा में आ गई हो।
0: जी
1: हाँ जी
0: बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है मौसम, है ना?
1: हाँ जी मैम, बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है।
0: और इंदु बताइए, अपने बारे में कुछ बता दीजिए आज।
1: मैं मैम म्यूजिक सुनने की बड़ी शौकीन हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ,
0: जी, किस तरह का
1: वैसे
0: संगीत
1: रेडियो
0: पसंद है
1: का
0: आपको?
1: मुझे 90 के सॉन्ग ही पसंद है,
0: अच्छा।
1: मैं वही सुनती हूँ, मतलब कि आपकी रेडियो में जो भी लगा हो ना मैं सारा दिन सुनती हूँ। ये एक ऐसा मतलब कि माध्यम है ना म्यूजिक सुनने का, कि इंसान बोर नहीं होता है, बस लगा के छोड़ दो, फिर आप अपना काम भी करो, फिर आप जो मर्जी करो, मतलब कि सो भी जाओ तो ये कानों में बजना
0: बजना
1: चाहिए।
0: चाहिए, एक तरह से आदत हो गई है ना
1: हाँ जी मैम, बड़ी ज्यादा आदत हो गई है,
0: जी।
1: सुबह 6 बजे
0: बहुत
1: लगा देती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है इंदु। और आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं फिर?
1: मैम बेटा मूवी का कोयल सी तेरी बोली।
0: अच्छा बहुत ही
1: ये
0: खूबसूरत।
1: इसलिए क्योंकि आपकी धर्मशाला की जितनी भी हमारी की जो है मैम, हमारी जितनी मैम, उनकी सब की आवाज मैम एक जैसी है, कि नाम नहीं भी बताओ तो भी हम पहचान लेते कि कौन सी मैम बात कर रही है।
0: अच्छा, इतनी
1: हाँ
0: पहचान हो गई है।
1: जी मैम, अगर आपको हमारी होगी है तो हमें भी आपकी
0: जी
1: होगी
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, जब लगातार संपर्क में रहते हैं तो पहचान तो हो ही जाती है ना?
1: हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल, अगर पहचान ही ना पाए तो बात करने
0: तो
1: किसका
0: बात
1: कारण है।
0: करने का क्या फायदा। जी बिल्कुल। और इंदु जी, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर है। शुक्रिया आपने हमें कॉल की, और सुनिए
1: ओके
0: अपनी
1: मैम,
0: पसंद का गीत। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: किसकी है?
1: मैं ग्राम कुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: महाराष्ट्र से तनु, लगता है इनकी फोन कॉल जो है वो कट चुकी है। और सखियो, जब भी हमें फोन करें तो सिग्नल का ध्यान रखें। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन?
2: जी
0: जी, सविता जी, रानी ताल से। क्या हाल चाल है आपके?
2: जी बहुत अच्छे हैं, हाल चाल ठीक है मैडम जी। मौसम भी ठीक है, मस्त है।
0: मस्त हो गया मौसम, है ना?
2: हाँ जी, हाँ जी, जी। और आप बताओ, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप सखियों से बातें कर रही हूँ।
2: हाँ जी
0: जी, क्या कुछ किया जा रहा है इस अच्छे अच्छे मौसम में, खुशनुमा मौसम में?
2: बस कुछ नहीं, ऐसे बैठे हैं घर में मैम।
0: कार्यक्रम सुनना जा रहा है?
2: बिल्कुल जी, वो तो सुनना ही है।
0: अच्छा, वो भी एक आदत है ना, सुनना ही है।
2: वो तो है ही है।
0: क्या अच्छा लगता है कार्यक्रम में सविता जी?
2: जी बहुत अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छे होते हैं मैम। पर एक कार्यक्रम बंद हो गया, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो आता था ना सुबह 8:30 मंगलवार को।
0: अच्छा,
2: हाँ जी, पहाड़ी।
0: चलिए कोई बात नहीं, नए नए कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे, है ना, और मिल रहे हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छे हैं मैम।
0: जी आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं?
2: जी आदमी खिलौने,
0: खिलौना है।
2: हाँ जी, हाँ जी, बहुत जताते हो प्यार, क्या हम सारे हो गए कैसे।
0: जी बिल्कुल, गुनगुना रही हैं आप, बहुत अच्छा। और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद,
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही
0: जी
1: हूँ।
0: तनु जी, पहले आपकी फोन कॉल कट गई थी, है ना?
1: जी मैम।
0: क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैम मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा,
1: जी मैम।
0: और इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है आपके, क्या रुचि रखती हैं?
1: मैम यही मैं मुझे पसंद है और इसमें ही मैं करियर बनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा, और तनु पहली बार फोन किया है आपने? अच्छा,
1: जी मैम।
0: कैसा लग रहा है फिर आपको?
1: मैम आपसे बात हुई तो और कैसा लग रहा, बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा, बढ़िया लग रहा है।
1: जी मैम
0: तो
1: बहुत खुशी
0: इस
1: हो रही है ना, मैंने पहली बार आपके कार्यक्रम में फोन लगाया तो मुझे बहुत खुशी हो
0: जी
1: रही
0: जी
1: है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है तनु, आप इतनी दूर से हमें फोन कर रही हैं और इस खुशी को हम दोगुनी करते हैं। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आज?
1: आपकी पसंद का, क्योंकि मैंने कार्यक्रम सुना नहीं क्योंकि फोन लगाया, ट्राई
0: अच्छा, मैं
1: करनी थी
0: आपको
1: ना।
0: फिल्मों के नाम बताती हूँ तनु। फिल्में हैं तुमसे अच्छा कौन है, ताल, सनम बेवफा, सैनिक, बर्दाश्त, बादशाह और अजनबी।
1: मैम पहली फिल्म बताइए ना, तुमसे अच्छा कौन है, उस फिल्म का मैम सुना
0: अच्छा, उस
1: दीजिए।
0: फिल्म का कोई सा भी गीत सुनवा दूँ?
1: हाँ मैम कौन सा भी सुना
0: ठीक है,
1: दीजिए।
0: आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और आप सुनिए। धन्यवाद कॉल के लिए।
1: ओके बाय बाय।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: हेलो, नमस्ते जी, नाम बताइए अपना।
5: मैं ज्योति बोल रही हूँ मैडम जी, हिमाचल से।
4: जी ज्योति जी, कहाँ से हिमाचल में?
5: मैडम जी पठानकोट के पास ही पड़ता है।
4: अच्छा, तो पठानकोट तो पंजाब में हुआ।
5: हाँ, तो उसके आगे।
4: अच्छा, आगे है हिमाचल से।
5: हाँ जी,
4: ठीक है। और ज्योति क्या करती हैं?
5: मैडम जी सिलाई का काम करती हूँ अपने घर पे।
4: अच्छा, घर पर ही?
5: हाँ मैडम जी।
4: सिर्फ अपने ही कपड़े सिलती हैं या और कपड़े भी आते हैं?
5: नहीं मैडम जी, हम अपने कपड़े सिलते हैं घर में।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: और इसके अलावा क्या कुछ करना अच्छा लगता है?
5: बस अपने हस्बैंड के साथ मैं बाहर रहती थी ना, तो अभी घर में आ गई, तो बस घर का काम करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ,
4: तो समय निकल जाता है इसी में, है ना?
5: हाँ मैडम जी।
4: जी बहुत अच्छी बात है ज्योति। और आज आपने कार्यक्रम में फोन किया है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी?
5: मैडम जी सनम विवाह का सुना दो, तूने दिल मेरा तोड़ा, ये वाला।
4: अच्छा, इसका आप टाइटल ट्रैक सुनना चाहती हैं?
5: हाँ मैडम
4: जी। चलिए ठीक है, आपकी पसंद आपके रेडियो सेट्स पर है ज्योति, और आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: ठीक है, आपका मैडम जी।

तो सखियो, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनो सखी यहीं पर संपन्न होता है और माफ़ी चाहेंगे उन कॉलर से जो इस समय फ़ोन कर रही हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि आपसे बात की जाए। तो यही कहूंगी कि अगले मंगलवार ज़रूर समय से फ़ोन करें और अपने इस खूबसूरत से कार्यक्रम का हिस्सा बनें।

और अब मुझे ने रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति, इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग हमें मिला अंकित धीमान से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the third National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of states and union territories in New Delhi today. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission mode to protect the nation's youth from the adverse effects of drug abuse. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, he stressed the judicious use of water and highlighted the need for its conservation.
4: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing. We have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go, the water should be used preciously.
0: The theme of this year's Water Week is Climate Resilient Water Management. The 5-day international event will provide a multidisciplinary platform, bringing together all stakeholders to deliberate upon the pressing challenges of water management. The Election Commission has announced the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. The Commission also announced by-poll for one seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of next month. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of next month. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes, work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a 3-day nationwide

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे। भाई ये कमेंट्स जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं। तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद हैं। ये एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोताएं जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफ़र और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 12-13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यानी देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी ज़िंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीज़ें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ, और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक, बड़े बड़े फ्लैशलाइट वाले कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मज़ेदार याद शेयर करते हैं, लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए 5 मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास 2-2 रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी आती है। और वो फिल्म जो है 1 महीने बाद देखने को मिली थी, बड़ी ही मज़ेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ गाने नहीं बल्कि वो रस हैं और इन गानों के बिना हमारी ज़िंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें AI के ज़रिए बना रहे हैं लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 के दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे लेकिन उस दशक की सादगी कहाँ से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुघड़ता, वो जीवन का सुकून कहाँ से लाएंगे जब संगीत में शोर कम और सुकून ज़्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं हैं, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, माँ के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें।

क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला और ड्रम्स की आवाज़, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे। आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊ जी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीज़ें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपने बात की है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था, तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे, अपनी पसंद के गाने सीडी में तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था। 80 का दशक अब कहाँ, विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज़ें सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली, 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया है हमें। इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं। वो लिख रही हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूं उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं, 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल ख़त्म किया था और पुणे की एक कंपनी में काम करना शुरू किया था, कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा

घर में कागज की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

और शानदार खबर आ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 147 रनों से जीत हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां विविध भारती परिवार की ओर से।

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहाँ विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर ये गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि

ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूँ और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता हैं जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहाँ होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी। ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें हैं। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज़ जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे, फिल्म का ये गाना निदा फाजली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे निदा फाजली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी, मनहर उदास और हेमलता, तीन अलग अलग आवाज़ों में इस गाने के वर्जन हैं। संगीतकार उषा खन्ना हैं ये भी। और इसके अलावा राज बब्बर पर फिल्माया गया दीपक पराशर और रंजीता, ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज़ में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियाँ इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं, गोरखपुर की जुबली टॉकीज़ में ये फिल्म

लिखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड वाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ़ की है एक फिल्म में। और उसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहाँ पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी, शायद ये गाना हमने सबसे ज़्यादा सुना है। इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था, तो और सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, ना मोबाइल ना वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर, कहा गया वो दौर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी ही सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना सको। क्या मुकाबला था शक्ति अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और चार बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं। यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: भाई ये गाना भी खत्म हुआ। कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का ये अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुदा गवाह, इनकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में चल सकता हूँ, अंग्रेजी में हंस सकता हूँ, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ये बात एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमक हलाल, लावारिस, कुली, मर्द, शहंशाह, काला पत्थर, कालिया, नसीब, शराबी, सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है, और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोक कर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
2: क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए, जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनसे टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी। क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी, कितना इंतजार था लोगों को, कितनी बार देखी है ये फिल्म, और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है, किसी ने लिखा है जीना तमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध और खून पसीना, ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतज़ार में थे लेकिन वक्त ने इजाज़त ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का विकल स्वर कौन थे इस फिल्म के संगीतकार, ये बताइए। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी,

क्या बेमिसाल गाना और इस गाने की ये बांसुरी, कितने लोगों ने तो अपने मोबाइल में इसे रिंगटोन के रूप में रखा है। आज के इस कार्यक्रम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हर कार्यक्रम को खत्म तो करना ही होता है ना अपने नियत समय पर। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया, 80 के दशक की सैर पर ले गए। जो यादें हैं उन्हें जिंदा रखिएगा, बांटते रहिएगा और अपने जीवन में जज्बात को घोले रखिएगा, क्योंकि जज्बात हैं तो हम हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, इजाजत दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी अजनबी शब्द पर आधारित है। हम, आप या कोई भी हो, जब पहली बार मिलते हैं तो अजनबी ही होते हैं। कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुलाकातें होती हैं, तो अजनबी काफ़ी हद तक नहीं रहते। लेकिन किसी सफ़र पर निकले हों, अचानक मुसीबतों से घिर जाएं, तो ऐसे में कोई अजनबी सा शख्स आकर मदद कर जाए और बिना कुछ कहे वो चला जाए, तो आंखें तलाशती हैं उस अजनबी को। कौन था, कहाँ से आया था, इतनी हड़बड़ी में नाम भी नहीं पूछ पाई। तब दिल को बड़ा अफसोस होता है, रह रह कर वो अजनबी अक्सर स्मृतियों में उभर आता है।

0: जिनसे हमारा रिश्ता नहीं होता, फिर भी वे दिल के बहुत करीब लगने लगते हैं। ना नाम का बंधन, ना पहचान का दावा, बस एक अनकहा अपनापन। कई बार ये अजनबी अपनों से ज़्यादा हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पहली बार मिले, पहली बातचीत, पहली मुस्कान, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत सा बन जाता है। जब हमारे अपने हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं वो एक अजनबी हमारी आँखों का दर्द पढ़ लेता है, हमारी खामोशी महसूस कर लेता है। तब महसूस होता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। वही कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।
1: अजनबी।

अजनबी सी मुलाकात, वो सफ़र पर मिली किसी की दुआ, बस में किसी अनजान बच्चे की मासूम मुस्कान, रास्ते में सड़क पार करते समय गिरने पर किसी अनजान का सहारा या किसी का पूछना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो हैं? और जब किसी अजनबी से मुलाकात अचानक दिल में प्यार का एहसास घोल दे, उससे बार बार मिलने को मन करे, एक रिश्ता सा जुड़ने लगे, तब वो अजनबी लगता है हमारे सुख दुख का, खुशियों को बांटकर जीवन भर साथ चलता रहे, हम सफ़र बनकर कई बार ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें उन्हीं से मिलती है जो कुछ देर के लिए हमारी दुनिया में आते हैं और हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है। उजाले उनकी यादों के उत्तम सिंह के साथ हर रविवार शाम 4 बजे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
3: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
2: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
5: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
7: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
8: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
7: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
9: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
2: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
10: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
11: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
10: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
12: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
13: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं साहिर लुधियानवी के बोल। फिल्म का नाम है वासना।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

शिकार फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्यार का मौसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार राहुल देवबर्मन। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के उद्घाटन अवसर पर कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी नवाचार, बेहतर नीतियां, वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय अनुभव और समुदाय की भागीदारी को साथ लेकर बहुहितधारक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। CP राधाकृष्णन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का स्वरूप लगातार अनिश्चित हो रहा है और ऐसे में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करने की आवश्यकता है जो अत्यधिक बारिश और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कारगर हो। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय ने 11 सड़क परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें चंबा किलाड़, खानागुंती, लामखागा, दर्रा, हरसिल और वांगतू मूड अट्टरगू सड़क परियोजनाएं प्राथमिकता 2 की सूची में शामिल है। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय चंबा जिला के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण सौगात है। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा किलाड़ मार्ग चुराहा, पांगी और किलाड़ जैसे दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि पठानकोट चंबा भरमौर मार्ग पर अनेक महत्वपूर्ण पास, टनल और ब्रिज प्रस्तावित हैं और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हर्ष महाजन ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। कुल्लू जिला में आनी उपमंडल के हरिपुर नागन क्षेत्र में आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य घायल है। घायल को उपचार के लिए रामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी व्यक्ति बड़ा गांव से एक विवाह समारोह से वापस घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान जाबो गांव के राहुल राणा, बालकृष्ण, विकास और गुंजन के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया और मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की राहत प्रदान कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत विकास परिषद द्वारा नाहन में भारत को जानो कार्यक्रम के तहत समूहगान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के नाहन शाखा के अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और देश की समृद्ध विरासत से परिचित करवाना रहा। यशपाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है।
3: भारत को जानो के संदर्भ में हिंदी समूह गान प्रतियोगिता, संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी आयोजित किया गया है। ये भारत को जानो कि हमारे भारत वर्ष की क्या संस्कृति है, क्या सामाजिक स्तर में हम अपने हिंदी भाषा को कैसे आगे करें, हर वर्ष आयोजन कराते रहेंगे ताकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो।
2: केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ अन्य संगठनों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगें रखी हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बैंक कर्मचारियों के काम के माहौल, पारदर्शिता और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कांगड़ा जिला की चिट्ठी। इसके लेखक हैं विपिन शर्मा, वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
2: सितंबर का महीना कांगड़ा जिला के लिए विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कृषि और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों के लिहाज से खासा सक्रिय रहा। महीने के दौरान जहां नगरोटा बगवा में करीब 150 करोड़ रुपए की विभिन्न जल शक्ति योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, वहीं 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हरित परिवहन की दिशा में कदम बढ़ाया गया। सिद्धवाड़ी स्थित चिन्मय तपोवन आश्रम में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाग लिया। कार्यक्रम चिन्मय मिशन की 75 वर्षों की यात्रा और पूज्य स्वामी चिन्मयानंद के जीवन और योगदान को समर्पित रहा। राज्यपाल ने कहा कि चिन्मय मिशन ने भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और उनके संदेश को देश विदेश तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्नेक बाइट अवेयरनेस डे के अवसर पर सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर उमेश भारती ने लोगों से सांप के काटने पर झाड़ फूंक और घरेलू उपचार से बचने और तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की करीब 150 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बलधर और सिंहुड़ उठाऊ सिंचाई योजना से 135 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। पठियार में 25 करोड़ रुपए की मस्सल पेयजल योजना का उद्घाटन किया गया। नगरोटा बगवा बस स्टैंड से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नियमों के पालन और जन जागरूकता पर जोर दिया। आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा में वर्ष 2026 में अब तक 87 लोगों की मृत्यु, 78 गंभीर और 359 मामूली चोटों के मामले सामने आने की जानकारी दी गई। डलझील परिसर में राधाष्टमी मेला उत्सव का शुभारंभ महाआरती के साथ हुआ। महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद रहे। धर्मशाला के साईं हॉस्टल में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों और साईं हॉस्टल के खिलाड़ियों ने भाग लिया। धर्मशाला NCOE के सहायक निदेशक जयप्रकाश सहानी ने बताया कि फिट इंडिया अभियान के तहत प्रत्येक रविवार को अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नशे की मांग में कमी लाने के लिए धर्मशाला में हितधारक कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित हुई। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने नशे के खिलाफ अभियान में विभागों के बीच समन्वय के साथ परिवार, समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया। कांगड़ा में मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने का रुझान बढ़ रहा है। समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम इकाई स्थापित करने की सब्सिडी को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए जाने की जानकारी दी गई। कम भूमि में उत्पादन की संभावना के कारण ये छोटे और सीमांत किसानों तथा ग्रामीण युवाओं के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन रहा है। कांगड़ा में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान 4,226 आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता एवं पोषण संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम के तहत खान पान में विविधता, हॉट कुक्ड मील, सामुदायिक भागीदारी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर जोर दिया गया। सितंबर में कांगड़ा के प्रमुख संस्थानों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने टांडा मेडिकल कॉलेज, पप्लोरा आयुर्वेदिक कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दवाओं, शिक्षकों के रिक्त पदों, सीटों और स्थायी कुलपति की नियुक्ति सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। युवा खेल सेवाएं आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना महामारी के कारण जायका परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका। प्रदेश सरकार ने जापान सरकार से परियोजना की अवधि बढ़ाने का आग्रह करने की बात कही। कांगड़ा के लिए सितंबर महीना कई सकारात्मक पहलों और साथ साथ मौजूद चुनौतियों का गवाह रहा। एक और इलेक्ट्रिक बसों, पेयजल, सिंचाई और सीवरेज परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास हुए। वहीं पर्यटन और विरासत संरक्षण को नई दिशा देने की पहल भी सामने आई। नंदपुर किले को विश्वविद्यालय द्वारा गोद लेने का निर्णय स्थानीय विरासत को शैक्षणिक शोध और पर्यटन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, नशा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे भी पूरे महीने प्रमुखता से सामने रहे। इसके साथ ही कांगड़ा जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कांगड़ा जिला की चिट्ठी। इसके लेखक थे विपिन शर्मा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 हुए हैं अब आकाशवाणी।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत की प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से MBA किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई वे और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले दिनों।
1: जी मैंने पढ़ा है, सुना है, और आपके बारे में भी पढ़ा है, और मैं भी सोच रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियाँ बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहाँ लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है। पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं। आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही हैं ममता जी।
0: बिल्कुल, भले ही महिलाएं अमूमन नहीं जाते, डरती रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं का ग्रुप मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है, लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है। हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गाँव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बैंगलोर हैदराबाद का किया हमने, इससे इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुने और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए, वो तो आप जब जिस शहर में रह रही हैं वहां जब घर से निकलती हैं तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है, मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेली ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है, विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
0: और आप निडर बनते हैं इसी बहाने। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहाँ तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही हैं तो परिवार के लोग उन्हें पहुँचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं, और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है, सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है। बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए, और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं। ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे समय आपका आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहाँ आप आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहाँ नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत ज़रूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
1: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा ममता जी कि भले आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहाँ तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए, ये मेरा अपना विचार।
0: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए। और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली और सोनाली जी, देखिए एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज़्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ, जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथी कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज़्यादा आनंद से ज़्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहाँ का मौसम, वहाँ के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहाँ पर सुरक्षा नहीं है वहाँ पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहाँ जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती हैं तो ग्रुप मिल जाता है
1: जी,
0: तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि हम मैं अकेली आई हूँ वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है, कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है, क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भाग दौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, अपने आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो

0: आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है
1: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
0: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोनाली जी, हम भी सोलो ट्रिप पर
1: फिलहाल दोनों मिलके सोलो ट्रिप
0: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका सफर उनके लिए सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहाँ गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहाँ पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमारा उसे उस समय उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाएं, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दें। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहाँ पर आप किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता जी?
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जो खुश रहो, यही आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहाँ पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे कहाँ, आपको मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मज़ेदार है, मेरी एक छात्रा की बातें हैं कह रही थी। वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़ी थी और एक हम उम्र लड़का आकर बोला आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज़। मैं बोली अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियाँ हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं। हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कहने के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है। हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहाँ पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है, जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है। लेकिन हाँ, मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करते हैं। इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो 40 साल की हो चुकी हैं लेकिन आंटी किसी के मुँह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने कहा मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ, मैंने कहा तुम लोगों ने 2 ही शब्द सीखे अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई काफी उम्र का हो चुका है, मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है। हाँ, मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
0: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल हैं, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
1: वही दीदी, ताई, भैया

0: पढ़ पढ़ के एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने की बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
1: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए हैं पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहें।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं
1: अंकल कहाँ दिख रहा।
0: और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं
1: तो
0: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई। अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा दें।

0: अब ये आंटी ना कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बेंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
1: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूँ तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है ना।
0: बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहाँ पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया। तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ताई मतलब
1: चाची
0: मतलब बड़ी माँ, एक तरह से मतलब जो चाची है,
1: माँ की जेठानी।
0: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही, मेरा आपका क्या नाता है। तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहाँ का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में दो गुना तीन गुना उम्र की रही होंगी और उन्होंने मुझे ताई कहा था और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा।
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेद ही लंका डाय। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है इसमें आज का मुहावरा है घर का भेद ही लंका डाय। इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
0: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है। तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई दे।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे मन का भी जान लेता है।
0: बिल्कुल,
1: मन में कभी सोचा है तो उसी के आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात चली जाती है,
1: शब्द पकड़ लिया तो उसी की आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भली भांति याद किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे सरकार, जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी के मुंबई केंद्रों से रिले किए जा रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज़ में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहाँ मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के ज़माने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है, और अब भी मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूँ, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूँ, और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
2: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है?
2: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है, जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहाँ ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, न किसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत है और रोल मांगने की ज़रूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के ज़माने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगा, और ऐसी कहानियाँ सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहाँ से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में बीचों बीच में हूँ इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविज़न, टेलीविज़न से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूँ, जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविज़न जो थिएटर और फिल्मों के बीच

0: में है और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है और उस संगम के बीचों बीच में हूँ इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतज़ार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बम्बई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज़्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेस कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज़्यादातर बादल सरकार के प्लेस थे, विजय तेंदुलकर के प्लेस थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेस थे, शेक्सपियर के प्लेस थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मगर बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेस लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब अडेप्टेड प्लेस हैं। और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेस का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज, जो रीजनल थिएटर है, वो ज़्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशंस हैं, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहाँ से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज़्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बम्बई में पृथ्वी और NCP है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहाँ 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए, और वहाँ सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं और हिंदी थिएटर को ज़िंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूँगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए, जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी, क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के, कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज़ में, और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी, वहाँ आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बम्बई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा, ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया। और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर, और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल ख़त्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं
1: बार बार
0: आते।
1: नहीं आते, और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में, जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के ज़माने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था, जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफ़ी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कभी स्केचेस देखें कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं हैं, तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी ने, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच

0: के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें। पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पांस था ऑडियंसिस का, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूँगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविज़न सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
0: जी।
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: हाँ, अंतर मैं कहूँगा, एक एक उदाहरण देता हूँ आपको
1: जी।
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्में, फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहाँ कुछ चीज़ें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए हैं कि आपको उसी तरह से बोलना है। आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा,
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहाँ कुछ ज़रूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविज़न पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज़्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूँगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूँ शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविज़न में कर चुका हूँ उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविज़न के अच्छे एक्टर्स को लेके वहाँ एक छोटे से रोल में ले लो, वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मज़ा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रहे मैं कहाँ फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना।
1: अच्छा।
0: जो दूसरे कैरेक्टर थे, मजा तो बहुत आया, क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो हाँ। उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ। अगर मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है,

0: वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता था।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूँ। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं ज़रूर एक्टिंग करना चाहूँगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत ज़रूरी है।

0: कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे, उस हिसाब से मैं चुन लेता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूँ या डायरेक्टर पाता हूँ।
1: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स कैमरा एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
0: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी जिसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफ़ी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने लिखी थी, और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं हैं, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किस में ज़्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था, जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफ़ी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बम्बई में हैं हम।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नज़रिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्युलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहाँ इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ भी नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहाँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूँगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीज़ों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी,
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और

0: ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थे सीरियल, और इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके, जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, जैसे पंजाबी जो हैं वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है, तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मज़ा आया। और वहाँ मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं, तो घर जमाई में बहुत मज़ा आया। और भी काफ़ी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मज़ा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नज़र आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज़्यादा है, वो ज़्यादा मजाक करता है वो आदमी। शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे वो सारे कैरेक्टर्स। वहाँ के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज़्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई,
0: ये
1: ऐसा
0: तो
1: मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज़्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल
0: बिल्कुल
1: बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर, मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी बोझ पर सर
1: डायरेक्शन के
0: पर?
1: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व तो हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज़्यादा ही है। तो वो ज़्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व तो देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मज़ा आता है। और जहाँ हमको एक गाना होता है वहाँ 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविज़न पर क्यों करें, टेलीविज़न को फिल्म क्यों बनाएं हम।
0: जी
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविज़न बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविज़न में नहीं रखते हैं। टेलीविज़न में कहानियाँ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविज़न का फॉर्मेट ही अलग है, और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविज़न को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविज़न को टेलीविज़न की तरह करें।
0: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई, जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
1: एक ज़माना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया। लेकिन उसका फ़ायदा ये भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज़ को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे। जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस का, ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।

0: अनन जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविज़न की, टेलीविज़न से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज़ भागती हुई ज़िंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार। जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता, थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया, तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे।
0: जी
1: वीडियो के बाद जब डीवीडी आए, तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज़ होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो

0: लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक
0: हम
1: कहा,
0: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
1: बिल्कुल। इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
0: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि
1: हाँ?
0: ठहरिए, होश में आऊं। गाना है,
1: ओह
0: सुनिए।
1: अच्छा बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, पता नहीं कितनी गलतियां आपको मिलेंगी और सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है।
0: जी
1: मैं बम्बई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये

0: जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
1: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं हैं, आप क्या करते हैं?
0: हाँ, संगीत में
1: रुचि है?
0: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है, तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फार्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
1: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे? किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
0: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने
1: बिल्कुल।
0: अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मज़ा आया, या तो ये कहें कि वाह कि दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूँगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
1: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज़ में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज़ में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
0: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूँ। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूँ।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
4: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
4: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
4: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
4: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
4: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान हैं, जो विभिन्न श्रेणियों फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा लेखन में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकरों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। उन्होंने 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। इस दौरान देश भर के 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी। श्री वैष्णव ने सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों को अपने अपने क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के भावी संस्करण की मेजबानी कर सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
8: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व LDP के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
7: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना दक्षता पुरस्कार NFCSF समारोह में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति किसानों की समृद्धि पर निर्भर करती है। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित कर लिया है, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
10: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu is presenting the 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Gujarat. Instituted in 1954, these award represents India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. In his address, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav congratulated all the award winners and acknowledged the contribution of technicians, cinematographers and other members working behind the scenes. He also congratulated the winner of the Dada Saab Phalke Award for 2024, Anand Nag, and appreciated his contribution to the film world spanning more than 5 decades. The minister said that the idea of taking the National Film Awards to different tourist destinations draws inspiration from India's G20 presidency, when more than 200 meetings were held in over 60 cities across the country.
11: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Saab ki world's tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार वील गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। हाउ विल वी सेलेक्ट द डेस्टिनेशन? आई एम गिविंग अ कॉल टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन योर स्टेट, टेल अस व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू विल मेक इन इट। योर डेस्टिनेशन विल बी सेलेक्टेड एंड वी विल हैव द नेक्स्ट राउंड ऑफ NFA इन द सेलेक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
10: Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the 3rd National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and Union Territories in New Delhi. The 2-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. During the conference, deliberations will also focus on identifying and adopting appropriate strategies to further strengthen the central government's measures for supply reduction, demand reduction and harm reduction. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes and work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a 3-day nationwide strike called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in the public sector banks from the 28th to 30th September. They have called a strike in support of 2 principal demands: implementation of 5-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive PLI scheme. The The Union Finance Ministry said that following detailed discussions, the government has fulfilled one of the demands and decided to keep the PLI scheme in abeyance. The ministry said strikes cause disruption in banking services that inconvenience the public, impact the business of the bank, and ultimately harm the interest of bank employees. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India's next phase of growth must be built on quality. Addressing the 53rd National Management Convention of the All India Management Association in New Delhi today, Mrs. Sitharaman said that every factory floor, boardroom, service center, research and development team must aim for higher standards, fewer defects and greater reliability. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed that water is the foundation of life and civilizations and stressed the need for its judicious use, conservation and effective management. Mr. Radhakrishnan made the remarks while inaugurating 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today, urging all participants to share knowledge, build partnerships and commit themselves to saving and conserving water. The Vice President said water security will lead to people's security and national security. India women's cricket team defended the gold medal at the Asian Games after thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishin in Japan today. Opting to bat, India posted 216 for the loss of 3 wickets in the stipulated 20 overs, riding on Smriti Mandhana's 79 runs. In reply, Sri Lanka were bowled out for just 69 in 15.4 overs. This is India's first gold medal at the ongoing ASEAN and overall 7th medal. The women in blue had won the gold in the previous edition of the Games too and have now defended the title against the same team. India's Roshi Beena Devi confirmed a 3rd medal at the Asian Games after securing a 5-0 win over Chu Man Sin of Macau, China, in the women's 60-kilogram quarterfinals at the Aichi Prefectural Martial Arts Hall in Nagoya, Japan today. And that is the end of this news bulletin.
6: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन फिल्मों से। सायंकालीन प्रसारण में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस भजन के साथ।

अभी आपने सुना यादगार फिल्म का ये भजन। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बेटा बेटी फिल्म से।

अभी आपने सुना ये भजन बेटा बेटी फिल्म से। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
1: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
0: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से, FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच का। इसमें आज के दिन रहता है सैर सपाटा।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ युवा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे सप्ताह हम हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, हर दिन के लिए कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो आज है दिन मंगलवार और आज के दिन हम अपने युवा साथियों को करवाते हैं सैर सपाटा। और सैर सपाटा युवा साथियों कहीं का भी हो सकता है, कभी कभी हम आपको पूरे देश में घुमा देते हैं और कभी कभी हम आपको लोकल भी घुमाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी घुमाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर मंगलवार वाले दिन आपको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएं। जी हाँ युवा साथियों, उससे क्या होता है कि चलिए आप भी बहुत व्यस्त होंगे होंगे अपनी दिनचर्या में, तो आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर आजकल बहुत सारी पूजा अर्चना हो रही है। जी हाँ, हम जानते हैं, हमारे युवा साथी जान ही चुके होंगे, लाल बाग के राजा जो हैं उनके दर्शन करवाएंगे आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से, और वो है मुंबई महाराष्ट्र में। जी हाँ युवा साथियों, आज हम वहाँ की सैर करेंगे और ये सैर आप करेंगे मेरे साथ, और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ की हर चीज़, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, पूजा पाठ, सभी वहाँ जो भी होता है उन सभी चीज़ों से मैं आपको अवगत करवा सकूं जितना हमारे पास कार्यक्रम में समय होगा। तो चलिए पहले लेते हैं म्यूज़िकल ब्रेक, आपका मूड करते हैं फ्रेश, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं जानकारी के साथ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हां, युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम कर रहे हैं सैर सपाटा, क्योंकि आज है मंगलवार। तो युवा साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे, और उसके लिए हमें चलना होगा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई। जी हाँ, भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के मध्य में स्थित लाल बाग परेल इलाके में बाजार में स्थित किए जाते हैं। ये मुंबई का सबसे प्रसिद्ध और भव्य सार्वजनिक गणेश पंडाल है। और इसके अगर हम इतिहास की बात करें युवा साथियों, तो लाल बाग के राजा की स्थापना वर्ष 1934 में स्थानीय मछुआरों और व्यापारियों यानी कोली समुदाय द्वारा की गई। और इससे जुड़ी जो सच्ची कहानी है उसके बारे में भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। वर्ष 1932 में मेरुचौल स्थित स्थानीय बाजार बंद हो गया था, जिससे मछुआरों और छोटे विक्रेताओं की रोजी रोटी छिन गई। उन्होंने भगवान गणेश से मन्नत मांगी कि अगर उन्हें व्यापार के लिए स्थायी जगह मिल गई तो वे सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू करेंगे। और जब इच्छा पूरी हुई तो स्थानीय नेताओं और भूस्वामी के सहयोग से उन्हें वहीं पर एक स्थायी बाजार यानी लाल बाग मार्केट के लिए जमीन मिल गई। अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी और आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने 12 सितंबर सन 1934 को पहली बार यहां गणपति बप्पा की मूर्ति जो थी वो स्थापित की। मूर्ति की ऊंचाई आमतौर पर 18 से 20 फीट होती है, और साल 1935 से आज तक लगातार कांवली परिवार की पीढ़ियां ही इस विशेष और पेटेंटेड रूप वाली प्रतिमा को तैयार करती आ रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी जो कब कैसे शुरू हुआ ये सारा त्यौहार, उसके बारे में हमने अपने युवा साथियों के साथ जानकारी साझा की। और अब लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं बाकी जो जानकारी है यहाँ की उसके साथ।

0: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा

भूख लग रही होगी, तो चलिए बात करते हैं खान पान पर। मुंबई और गणेशोत्सव का नाता बेहद गहरा रहा है युवा साथियों, जो यहाँ के खान पान, रहन सहन और संस्कृति में साफ झलकता है। ये त्यौहार मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी को रोककर पूरी श्रद्धा और उमंग से सरोवर कर देता है। और अगर हम यहाँ के खान पान की बात करें युवा साथियों, तो गणेशोत्सव के दौरान मुंबई का स्वाद पूरी तरह पारंपरिक और सात्विक हो जाता है। उकड़ीचे मोदक बप्पा का सबसे पसंदीदा भोग है। चावल के आटे की पतली परत के अंदर ताजे नारियल और गुड़ का मिश्रण भरकर इसे भाप में पकाया जाता है और ऊपर से शुद्ध घी डालकर इसे परोसा जाता है। और पारंपरिक महाराष्ट्रियन थाली की अगर हम बात करें, तो त्योहारों पर वरण भात यानी दाल चावल के साथ आलू बड़ी यानी अरबी के पत्तों के पकोड़े, कोथिंबीर बड़ी यानी धनिया बड़ी, काला बटाना उसल, काले मटर की सब्जी और पूरियां बनाई जाती हैं। स्ट्रीट फूड का तड़का जब लगता है युवा साथियों, तो पंडाल में घूमने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाल बाग और परेल जैसे इलाकों में बड़ा पाव, मिसल पाव, रगड़ा पेटिस और गर्मा गर्म जलेबी खाने की होड़ मची रहती है। तो युवा साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ आपने भी ये सारे खान पान का आनंद लिया होगा, पहले भोग लगाया होगा गणपति जी को, उसके बाद ही पाया होगा, है ना युवा साथियों। तो चलिए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और फिर हम बात करेंगे वहां के रहन सहन की, क्योंकि हमारे युवा साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां शॉपिंग भी करवा देंगे।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। युवा साथियों आप पहुंच चुके हैं अंतिम क्षणों में, तो चलिए बात कर लेते हैं वहां के रहन सहन की। तो रहन सहन और जीवन शैली की अगर हम बात करें तो गणेश चतुर्थी के 10 से 11 दिनों के दौरान मुंबई का रहन सहन पूरी तरह बदल जाता है। चौल संस्कृति और आत्मीयता की अगर हम बात करें तो मुंबई की ऐतिहासिक चौल में आज भी पारंपरिक और घरेलू माहौल में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। पड़ोसी एक परिवार की तरह मिलकर आरती और भोजन का आयोजन करते हैं। भव्य पंडाल और भीड़ की अगर हम बात करें तो लाल बाग यानी किंग्स सर्कल, GSB सेवा मंडल और गणेश गली जैसे बड़े पंडालों में 24 घंटे भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। लोग रात रात भर जाकर बप्पा के दर्शन करते हैं। और पारंपरिक पोशाक की अगर हम यहाँ की बात करें तो इन दिनों मुंबई के जीन्स टी शर्ट छोड़कर पारंपरिक कपड़ों में नज़र आते हैं, यानी पुरुष कुर्ता पायजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएँ पारंपरिक नौवारी या पैठणी साड़ियाँ पहनती हैं। ढोल ताशा और विसर्जन की अगर हम बात करें तो उत्सव की शुरुआत और विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन पूरा शहर ढोल ताशा के संगीत, गुलाल और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठता है। जानकारी अभी और बाकी है, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने अपने घरों में सुख शांति से रहें और खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी दोस्त वर्षा टोश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम मौजा ग्राइंड हम प्रसारित करेंगे शाम 6:30 पर। इसमें जानकारियों के साथ साथ लोक संगीत भी सुनवाया जाएगा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। देशगान का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:30 का। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायक महेंद्र कपूर द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 से रात्रि 10:30 तक आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत पुरानी फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए जाएंगे रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार और शाम 7:10 पर कार्यक्रम खेती बाड़ी भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी दिल्ली से शाम की सभा में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9 बजे News@9 भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के केंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल में हवाई संपर्क व विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में राज्य सरकार, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किए गए इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से मौजूदा व नई उड़ान हवाई सेवाओं, पात्र विमानन अवसंरचना के विकास और संचालन के लिए सहयोग का एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। यह समझौता 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। इस व्यवस्था के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यानी VGF का 20% योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि 80% केंद्र सरकार वहन करेगी। पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव संदीप कुमार ने बताया कि बेहतर हवाई संपर्क से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में पहुँच में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में स्थापित किए गए किताब घर हिमाचल की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को पाठकों तक सहजता से पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा कि किताब घर स्थानीय लेखकों को पाठक वर्ग से जोड़ने और प्रदेश में पठन संस्कृति को नई ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में शिमला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में किताब घर संचालित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किताब घरों को केवल पुस्तक बिक्री केंद्र तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें साहित्यिक संवाद, पठन पाठन और सांस्कृतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व में कई बड़ी परियोजनाएं स्थापित हुई, लेकिन उनसे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास परियोजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने को सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
1: जो किशाऊ बांध का एग्रीमेंट हुआ, कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपए का हिमाचल को जो है फायदा हुआ। चंबा के लोगों और हिमाचल प्रदेश के लोगों के अगर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं 12, 18, 30 की, तो इन NHPC को भी, SJVNL को, प्राइवेट प्रोजेक्टों को भी मानना चाहिए, जिससे कि हिमाचल प्रदेश 2032 में आत्मनिर्भर बने।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस सरकार पर हिमाचल के दीर्घकालिक हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परियोजना से संभावित आय का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नए समझौते में प्रदेश के जल अधिकारों और बिजली की हिस्सेदारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा परियोजना का स्वागत करती है और इसे आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। बलदेव तोमर ने किशाऊ बांध परियोजना के समझौते को सार्वजनिक करने और जल अधिकारों, बिजली हिस्सेदारी, वित्तीय लाभ व रोजगार के प्रावधानों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सिरमौर जिला में नाहन शहर के वार्ड नंबर 5 में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें आधुनिक तरीके से पानी की सप्लाई पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नाहन शहर के 3 प्रमुख स्टोरेज टैंकों का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है। राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत चल रहे इस कार्य को मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: हमारे 3 टैंक थे जहां वर्किंग स्पेस बहुत मिनिमम थी, में काफी लीकेज है, टैंकों को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके साथ जो नई पाइपलाइन है वो भी बिछने जा रही है। ये अमृत के माध्यम से जो हमें पैसे मिले थे नान वाटर सप्लाई के, इसके तहत हम एक वार्ड को मॉडर्नाइज करेंगे। इस वार्ड को हम IoT के, अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ेंगे। पायलट बेसिस पे होगा, अगर हमें वहां सक्सेस मिलती है बाकी वार्ड्स में भी हम इसको लेके जाएंगे।
0: शिमला के संजौली स्मृति क्षेत्र में निर्माणाधीन भूमिगत टनल के ऊपर स्थित मकानों में आई दरारों और अन्य नुकसान के संबंध में आज शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित क्षेत्र में राजस्व विभाग के अधिकारी ऐसे मकानों को चिन्हित करेंगे जिनमें मुरम्मत की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सांझ। सुरमय सांझ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस संगीतमय सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा टोच। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

0: अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर किशोर कुमार ने, शब्द रचना की थी अनजान ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सांझे समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: स्पोर्टी लुक स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स और फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 24.8 kmpl। ये है एपिक न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल, अब पाइए पावरफुल जेड सीरीज इंजन के साथ जो हर ड्राइव को बनाए मजेदार और इकोनॉमिकल। और अब मिलेगा टोटल बेनिफिट अप टू ₹35,000। स्टाइल, सेफ्टी और सेविंग सब एक ही पैकेज में, तो देर किस बात की, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर आज ही विजिट कीजिए और स्विफ्ट पेट्रोल घर लाएं। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है।
0: सुरमई सांझ कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर आशिक फिल्म का यह गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

0: अभी आपने सुना मिस्टर आशिक फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था कुमार शानू ने। शब्द रचना इंदिवर की थी और संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सांझे समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम सुरमई सांझ में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षक टोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रजिया सुल्तान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अभी आपने सुना रज़िया सुल्तान फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफ़ी आज़मी की लिखी शब्द रचना को संगीत में पिरोया था मोहम्मद जहूर खय्याम ने। सुरमई सांझे समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

लेकिन फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मजा ग्राइंडियां।

कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने वाले सारे साढ़े जिहड़े किसान बागवान व पशु पालक भाई भैणा हन तिन्हां सारियां जो तुहाड़ी खड़दुंबी ताई दी तरफ ते प्यार भरी नमस्ते। ता किसान भाइयों कदे हन तुहां आहां उम्मीद करदे कि तुहां ठीक ठाक होने क्योंकि हुण तां बरसाती भी जिहड़ी हन से खत्म हुई हैं कने हुण जिहड़े हन से थोड़े ठंडे यानी कि सर्द गर्म दिन जिहड़े हन से आईए क्योंकि जे अंदर जा दे तां मिठी मिठी सर्दी लगा दी किसान भाइयों कने बाहर आवा दे कने धुप्पा च बैठा दे तां फकोई निकला दे है ना जी। तां मौसम हुण बड़ा सुहावना हुई है कने बाकी किसान भाइयों तुहां सोचना भी अज ये ताई इतने दिन बाद कुतां ते आई रही है ना तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज थोड़ा ठीक थी तबीयत क्योंकि बरसातां बड़ियां थियां तो तुहानू पता बरसातीं च इहियां बीमारियां समारियां लगियां रहिंदियां है ना। पर सैरी की सगरांद लई अहां मनाई कने हुण अहां होईए बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं सोचिया अज टियाले पर मैं कल्ली जाई आउंदी तो अज अहां लेके हाजिर होई हो मौजां ग्राएं दियां कने इस अज अहां गलबात करनी जानकारियां तो तुहानू अहां दिंदे ही हन हर कार्यक्रम च पर अज खड़दुंबी ताइये दे पटारुए च जिहड़ी जानकारी है ना पहले तो गल करनी अहां अल्पसंख्यकां पर तिन्हां दे अधिकारां दी कानूनां दी है ना कने फिर अहां बिच दी गल करनी मुर्गी पालन दे बारे च यानी कि बैकयार्ड पोल्ट्री यानी कि घरे दे पछवाड़े अहां छोटे छोटे जिहड़े मुर्गू हन से कियां पाली सकदे ते दे बारे च अहां तुहानू विस्तृत जिहड़ी असें जानकारी देनी। ठीक है किसान भाइयो कने बाकी जिहड़ा ऐ सै गीत संगीत तो तुहानू पता है भी चली रहिंदा कने जे गीत संगीत नहीं होवै तां फिर मज़ा भी नहीं आउंदा है ना। टियाले दी निहालपी हां जो तां लगी हुंदी क्योंकि जानकारियां भी हुंदियां गप्पां ठप्पां भी हुंदियां कने गीत संगीत भी हुंदा। तां चलो पहले तुहानू ले चलदे इस लोक गीत दी तरफ कने फिर हाजिर हुंदे हां जानकारियां कने। ठीक है तां खड़दुंबी ताई तुहानू सुना दी सा वेला निम्मो चौधरी की आवाज़ च गाया ये सुहाग गीत क्योंकि किसान भाइयो अजकल ब्याह का जोर पिया कने जिथों दिखा तिथों टेंट लगे है ना तो आओ आए सुनते हाँ सुहाग गीत।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जी किसान बागवान पशुपालक भाई बहनों ता सुने तो हाँ ये प्यारा दिया स्वाग गीत कने तिस्ते बाद हाँ विज्ञापन जिहड़े न सह भी सुने हैं है ना, ये भी सांझो बड़ी सारी जानकारी दिंदे साढ़े प्रदेश च क्या क्या आवा दा क्या क्या नवीं स्कीम आवा दियाँ तो एती दे बारे च होंदे है ना। तो हुण खड़दुंबी ताई जिहड़ी है सह तुहाड़े वास्ते लेके आई हो जानकारी। ठीक है, तो जानकारी अहां दिया दे तुहानू जो अल्पसंख्यक आ पर ता किसान भाइयों अल्पसंख्यक सह समूह है जिहड़ा कुसी भी देशे च या राज्य की कुल जनसंख्या का जिहड़ा है तिहदी तुलना च बड़े घट जिहड़े

ठीक है जी, तिने बोलते यहाँ अल्पसंख्यक जिन्हों की भाषा धर्म संस्कृति या नस्ल बहुसंख्यक समाज से जोड़ा से बिल्कुल अलग हों, है ना जी। ये तो होंगे अल्पसंख्यक। हूँ हाँ अगर तिना के अधिकारा की कने इन्ह की गल करिए सह इं हों किसान भाइयों भी अधिकार इन्हों सह कानूनी कने संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं जोड़े समाज धार्मिक भाषा या जाति दे रूप च छोटे समूहों की पहचान संस्कृति कने समानता की रक्षा करते हैं ना। कने अल्पसंख्यक जेड़े हैं तुह समझी ये होने कि जिन्हें बड़ी घट संख्या हो ना किसान भाइयों तिन्हें बोलते हाँ अल्पसंख्यक। ठीक है जी, तो इदे बारे च हाँ गां भी गलबात करनी, पर सुनी लेंदे एक और प्यारा दिया जेड़ा सै लोक गीत।

0: मुझे सांप ने काट लिया।
1: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
2: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
3: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
4: कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां विच असा अपने किसान भाइयां, बागवान भाइयां, कने पशु पालक भाई भैणा दा फिरी ते स्वागत करदे। कने अज तुहाड़े कन्ने टैले पर बैठिए तुहाड़ी खड़दुंबी ताई कने गलबात हां अल्पसंख्यकां दे अधिकारां दी। कने अल्पसंख्यक क्या होंदे इहदे बारे च हां करी बैठे। कने हुण मैं तुहानूं गलाया हां मुर्गुआं दे बारे च गल करनी है, यानी कि बैकयार्ड पोल्ट्री। किसान भाइयो, मेरा गलाने दा मतलब ये है कि घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन, यानी कि अहाँ घरे दे पिछवाड़े जेड़ा साड़ा कूड़ा कचरा जो भी अहाँ चुल्ले चौंके दी जेड़ी अहाँ नाली बनाई होंदी ना, अहाँ कई बारी इहदी ओह कढ़ी दिंदे क्यारें कढ़ी दिंदे है ना, तां तिस तईयां इहदा नां रख्या भी घरे दे पिछवाड़े मुर्गी पालन जेड़ा ऐसा कियां करना है ना। तां घरे दे पिछवाड़े मुर्गी पालन करने दी सब ते वड्डी विशेषता यह है कि इस चाहां बड़ा वरी बड़ा कोई पोल्ट्री फार्म नहीं खोलना हुंदा। इस वास्ते हुंदा किसान भाइयों पर यहाँ 10 से 20 मुर्गियां तक जेड़ा है से रखी सकते है ना। 10 ते शुरू होंदे, कने 20 दे अंदर अंदर 20 भी रखी सकते तुहां। कने मुर्गे जेड़े हैं क्या करना तुहां, भी इ'यां नहीं लैने। इ'यां तां मुर्गे जेड़े होंदे किसान भाई उसे बड़ी बारी उजाड़ पांदे है ना, तुहानूं जो पता ही है वे कुसी भी चीज़ा जो चिमड़ी आ ने तां तिसा दा सत्यानाश करी के ही छड़दे। तां इस वास्ते अहां क्या करना कि सब ते पहले अहां, वैसे इंडिया च तां खुड्डा गलांदे ना, पर इस ते पहले अहां जो क्या करना पौना मुर्गी पालन दी, अगर तुहां सोचा दे भी घरे दे पिछवाड़े तुहां मुर्गी पालन करना, तां तुहानूं जो पहले ओड़ा बनाना पौना। प्हाड़ियां च तां अहां ओड़ा ही बोलदे। कने मैं समझदी भी मेरे किसान बागवान कने जितने भी और पशु पालक भाई भैन इस कार्यक्रम जो सुना दे से समझिए होने भी ओड़ा क्या होंदा। ओड़ा हाँ अपनी पहाड़ी भाषा च गलांदे जिस च हाँ थोड़े मुर्गे रखदे है ना जी। तो तिसी ओह हाँ हिंदी च अगर गलाइए तो घरे दे पछवाड़े मुर्गी पालन ये गलांदे है ना। मैं ये सारियां गल्लां तुहानूं जो तां दसा दी कि तुहानूं मतलब सारे पासियां ते पता होना चाहिए, अंग्रेजी च भी पता होना चाहिए, पहाड़ी च भी, कने हिंदी च भी है ना। अंग्रेजी च गल करिए तो बैकयार्ड पोल्ट्री, हिंदी च गल करिए तो घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, कने पहाड़ी च गल करिए तो घरे दे पछाण जेड़ी गंदगी फंदगी होंदी, क्योंकि कुकड़ तो सब कैसी खाई जांदे है ना जी। कने कुकड़े दा जेड़ा मीट हुंदा बोलदे बहुत गर्म हुंदा, कने जेड़ा देसी तरीके कन्नै अहां कुकड़ां पालदे ना से जेड़े अंडे हुंदे से महंगे भी बिकदे, कने पौष्टिक भी होंदे, कने तिस च सब कुछ जेड़ियां चीज़ां न से ज़्यादा होंदियां, क्योंकि जेड़े जियां दिखा ना मुर्गियां दियां भी बड़ियां भारी किस्मां न, बॉयलर हैं, क्रॉयलर हैं, मतियां सारियां किस्मां न। तो तुहां जालू जे अगर पालने की सोचा दे तो एक तो होंदे ना जेड़े से अजकल इस चाहुंदे छोटे छोटे से साइकलां कने मोटरसाइकलां पर लेके चले होंदे, ता किसान भाइयो तियां नहीं लैने मुर्गे। तिस च सानूं ना ये पता नहीं होंदा कि ये कौन दे ब्रीड है ना। मुर्गे जे लैने तां तुसां पशु पालन विभाग जेड़ा है तिन्हां कन्नै गल्लबात करनी, क्योंकि तिन्हां नाल बहुत सारियां स्कीमां जेड़ियां साढ़े किसान भाइयों वास्ते आईयां होंदियां, तां तुसां तित्थू जाई के पूरी जानकारी जेड़ी है से लैनी। कने इस च भी हिसाब हुंदा भी जियां थोड़े वल्नरेबल ग्रुप जेड़े होंदे, मतलब गरीबी रेखा ते जेड़े नीचे ग्रुप होंदे, तिन्हां थोड़े घट इस पर मिलदे। कने जेड़े जनरल होंदे तिन्हां वास्ते नॉर्मल रेट हुंदा, ता क्योंकि इ'यां अगर तुहां लेंगे तो तुहां ठगोई भी सकदे है ना। तो मैं चाहती मेरे जेड़े किसान भाई हैं से ठगोन ना, कने एक पूरी जानकारी लेके जेड़ा न से मुर्गी पालन करना। कने जे अच्छी अहां ता पहाड़िया च क्वालिटी गलांदे है ना, अच्छी क्वालिटी दा मुर्गा तुहां पालना होवे तो तिसदा जेड़ा मीट है से भी बड़े अच्छे रेट पर जांदा, अच्छे दाम पर जांदा। कने अंडे जेड़े हैं जियां तुहां क्रॉयलर दी गल करा तो इसदा तो अंडा ही बड़ा भारी महंगा होंदा। तो दिखा घर बैठे बैठाए ईंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा, क्योंकि दिखा तुहां तिन्हां तईयां विशेष कुछ नहीं करना, कोई फीडा का इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं,

ते किसान भाई हुण घड़िए दियां सूइयां बुला दियां भी ट्याले दा टाइम गया होई कने खड़दुंबी ताई हुण चली पो कैं कि सेहत बिन ना साथ दिंदी कने ठंड बधा दी तां तुहां जो मैं गलाना चाहंगी भई तुहां भी अपना कने घरे च जिहड़े बजुर्ग हन कने छोटे बच्चे हन तिन्हां दा बड़ा बड़ा ख्याल रखना हुण अपनी खड़दुंबी ताई अजोध्या अनुमति। अच्छा जी जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
2: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगली चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। President Draupadi Murmu presented the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Gujarat today. The ceremony honored outstanding cinematic achievements for the year 2024. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories. Veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award for the year 2024. Article 370 received the Best Feature Film Award, while Yami Gautam was honoured with the Best Actress Award for her role in the film. Mammootty and Kartik Aaryan jointly received the Best Actor Award for Brahmayugam and Chandu Champion. Rajkumar Periasamy received the Best Direction Award for Amaran, while Kalki 2898 AD was honoured as the Best Popular Film providing wholesome entertainment. Randeep Hooda received the Best Debut Director Award for Swatantya Veer Savarkar. Addressing the gathering, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw today announced that National Film Awards will be taken to the country's best tourist destinations, inspired by Prime Minister Narendra Modi's vision to take national events beyond conventional venues and connect them with destinations across the country.
4: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Saab ki world's tallest statue hai, us jagah aaj hum ikatte hue hain. Ab agli baar we'll go to one more important destination. I am giving a call to all the states and union territories. Select one of the most important tourist destinations in your state. Tell us what improvements you'll make in it. Your destination will be selected and we'll have the next round of NFA in the selected tourist destination.
3: Addressing the film fraternity, President Draupadi Murmu today highlighted the cultural strength and diversity of the Indian cinema. The President emphasized the important role of cinema in reflecting India's varied languages, traditions and social experiences. She said that films not only entertain audiences, but also connect people across regions and help showcase India's rich cultural heritage. 21 states and union territories have signed memorandums of understanding with the Civil Aviation Ministry under the next phase of the Udaan, Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme in New Delhi today. Speaking on the occasion, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu highlighted the vision for the next phase. The minister noted that following the extension of the scheme for another 10 years, the government aims to construct 100 new airports and 200 modern heliports or helipads across the country. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India will remain an important driver of global energy demand in the decades ahead. The minister co-chaired the 7th high-level meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC-India Energy Dialogue, with OPEC Secretary General Haitham Al-Ghais in New Delhi. On World Rhino Day, Prime Minister Narendra Modi has said that India celebrates the magnificent greater one-horned rhinoceros and laud all those at the forefront of its protection. In a social media post, he underlined that Assam now holds nearly 80% of the world's rhino population and Kaziranga's efforts to end rhino poaching have been extensively appreciated. Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force today concluded the bilateral air exercise Veer Guardian 2026 at Air Force Station Jodhpur. Defense Ministry said the 14-day exercise served as a vital platform for enhancing interoperability and strengthening the strategic partnership between the two air forces. The Indian women's cricket team reasserted its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Asian Games, thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nissin in Japan today. This is India's first gold medal at the ongoing Asiad and overall seventh medal. Prime Minister Narendra Modi have congratulated the women's cricket team on the feat. India's men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals and assured itself of a medal at the Asian Games. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarters in the men's 55kg preliminary round. And that is the end of this news bulletin.
0: FM Wind 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम खेतीबाड़ी रिले किया जाएगा।
5: वाणी का

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा

0: सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
2: आकाशवाणी शिमला के किसान वाणी श्रोताओं को हमारा
3: नमस्कार।
2: किसान श्रोताओं, किसान वाणी के आज के संग को लेकर मैं हूँ रविंदर विशेष
3: और मैं हूँ शिवरंजन। किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को संध्या 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: जी शिवरंजन, क्या कुछ आप लेकर आए हैं किसान वाणी की इस अंक में आज हमारे किसान बागवान श्रोताओं के लिए?
3: किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर आपको जानकारी देंगे वो है अदरक की देखभाल व रोग प्रबंधन।
2: तो किसान बागवान श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अदरक की देखभाल और रोग प्रबंधन की।
3: जी
2: किसान बागवान श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश के अदरक उत्पादन क्षेत्र में कमी के दो प्रमुख कारण पाए गए हैं। पहला, अदरक में सड़न रोग और दूसरा, किसानों द्वारा बेमौसमी सब्जियों का उगाना। इन कारणों द्वारा किसान अदरक ना उगाने के लिए बाध्य हो गए हैं। इस प्रकार किसान अदरक को नजदीकी क्षेत्रों से खरीदते हैं, कुछ किसान अदरक अन्य राज्यों से भी खरीदते हैं।
3: किसान भाइयों, देखिए अदरक में कई तरह के रोग भी लग जाते हैं, जैसे कि गठी सड़न रोग, पीत रोग, पत्तों का धब्बा रोग और जीवाणु विघलन रोग। किसान भाइयों, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गठी सड़न रोग की। ये रोग पीथियम नामक फफूंद की प्रजातियों से लगता है। प्रभावित पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और इन पौधों के डंठल जमीन की सतह से नरम पड़ने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। इस प्रकार रोगी पौधों की गांठें नरम और पीली पड़ जाती है। किसान भाइयों, अंदर की रेशेदार उतिकाओं को छोड़कर अन्य सभी उतिकाएं गलकर सड़ जाती है। रोगी पौधे सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये सड़न पीथियम वंश की अनेक जातियों द्वारा उत्पन्न होता है।
2: जी ये तो बात है किसान बागवान श्रोताओं, गठी सड़न रोग की। एक और रोग की बात करते हैं जिसका नाम है पीत रोग। किसान बागवान श्रोताओं, ये रोग फ्यूरेजियम नामक फफूंद की प्रजातियों से लगता है। प्रभावित पौधों की निचली पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और इन पौधों के डंठल सूख जाते हैं। ये रोग किसान बागवान श्रोताओं, खेतों में अलग अलग स्थानों पर विशेष रूप से दिखाई देता है। इन रोगी गांठों के अंदर के भाग भूरे रंग के पड़ जाते हैं। प्रभावित पौधों की जड़ें पहले सड़ती हैं और फिर गांठ बाहर से स्वस्थ दिखती है। बरसात में ये रोग अधिक फैलता है। इस रोग का प्रकोप उन स्थानों पर अधिक होता है किसान बागवान श्रोताओं, जहाँ पानी का निकास उचित तरह से ना किया गया हो।
3: जी किसान भाइयों, इसके अलावा अदरक में एक और रोग लग जाता है जिसका नाम है पत्तों का धब्बा रोग। किसान भाइयों, इसमें पत्तों पर दाग पड़ जाते हैं जो कि बीच में सफेद और किनारों से काले व भूरे रंग के हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस रोग की रोकथाम के लिए आपने फसल में रोग के लक्षण आते ही ब्लाइटॉक्स 50 का 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी में घोल बनाकर आपने छिड़काव कर देना है। इसे 15 दिन के बाद भी आप छिड़काव दोबारा कर सकते हैं।
2: जी किसान बागवान श्रोताओं, ये तो बात हुई अदरक की फसल में लगने वाले कुछ मुख्य रोगों की। अब बात कर लेते हैं कि स्वस्थ अदरक के फसल के लिए किसान बागवान श्रोताओं को कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं?
3: जी
2: सबसे पहले किसान बागवान श्रोताओं, बुवाई के लिए मातृगांठें स्वस्थ होनी चाहिए। इसके लिए आप बीज अदरक को उन पौधों से चुने जिनकी मातृगांठें स्वस्थ हों। अदरक के पौधों को उखाड़ते समय ये ध्यान रखें कि इन पौधों की जड़ें और रोगी गांठें उसी खेत में न जाएं, इसलिए इन्हें इकट्ठा करके किसी गड्ढे में आपको दबा देना चाहिए।
3: किसान भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात करें बीज उपचार की, तो अदरक की गांठों को फफूंदनाशी दवाइयों के घोल में 1 घंटे के लिए उपचार करें। 1 बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर इसमें डाइथेन M45 का 250 ग्राम और बेबिस्टिन 100 ग्राम डालकर अच्छी तरह से आप घोल बना लें। इस घोल को किसी ड्रम जिसमें 6 कनस्तर पानी पहले से भरा हो उसमें आप डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। इसमें घोल की कुल मात्रा 100 लीटर हो जाएगी और इसमें 80 किलो अदरक का उपचार आसानी से किया जा सकता है। इसी घोल को अदरक उपचार के लिए पुनः प्रयोग करें। उपचार के बाद गांठों को छाया में आपने सुखा लेना है जिससे इनके ऊपर किसी किस्म की नमी ना रह सके।
2: जी किसान बागवान श्रोताओं, इसके अलावा मिट्टी उपचार की सिफारिश भी की जाती है। पुराने फसल के अवशेषों को इकट्ठा करके आपको जला देना है। ऐसा करने से रोगाणु मर जाएंगे। इसके अलावा किसान बागवान श्रोताओं, पौधों को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और मिट्टी भी हवादार हो जाती है जिससे अगली फसल की बढ़ोतरी और उत्पादन अच्छा होता है। परिणाम स्वरूप स्वस्थ फसल की आशाएं अधिक हो जाती हैं। अदरक की बुआई से पहले किसान बागवान श्रोताओं, खेत की 3-4 बार आपको मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इससे फफूंद, सूत्रकृमि, राइजोम फ्लाई के मैगेट और प्यूपा सतह पर आकर धूप से मर जाते हैं। अकेले यूरिया का अदरक

0: के खेतों में इस्तेमाल ना करें। हो सके तो किसान बागवान श्रोताओं दोपहर से पहले गठियों को खेतों में लगाएं। ऐसा करने से गठियों पर निकले नरम अंकुर धूप और गर्म हवा से बच जाते हैं। बिजाई के बाद खेत को तुरंत मल्च से ढक दें। मल्च भूमि की नमी को बचाता है और अंकुरों को जल्दी बढ़ाने में सहायता करता है।
1: जी, अब बात करते हैं किसान भाइयों सफाई की भी। उपचार करने के बाद भी अगर कोई रोगग्रस्त गठिया या फिर पौधा खेत में नजर आए तो उसे उखाड़ कर किसान भाइयों आपने बाहर फेंक देना है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें अगर हम जल निकासी की, तो बीज उत्पादन के लिए खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अधिक पानी से पौधों में रोग लगने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं फसल चक्र की भी। किसान भाइयों अदरक की फसल लेने के बाद इस खेत में धान, मक्की या मोटा अनाज आपने उगाना है। खेत में 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र आपने अपनाना है। इससे मिट्टी से पौधों में आने वाले रोगाणुओं की मात्रा भी कम हो जाएगी।
0: जी, अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं कि भंडारण से पहले अदरक का उपचार आपने किस प्रकार से करना है। अदरक भंडारण के लिए खातियों की सफाई करें। इन खातियों में सूखा घास जलाएं। खातियों के धरातल सतह पर रेत की मोटी परत जो कि लगभग 6 से 9 इंच होनी चाहिए उसको बिछाएं। इसके अलावा अदरक का उपचार डाइथेन M45 जिसकी मात्रा रहेगी 250 ग्राम और बेवेस्टीन 100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में बनाकर 1 घंटे के लिए आप करें। इस घोल में 80 किलो अदरक का उपचार पहली बार और फिर 80 किलो अदरक का उपचार दूसरी बार आप कर सकते हैं। उपचारित गांठों को छाया में सुखाएं। इस अदरक का 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइफोस 20 cc प्रति किलो बीज से उपचार आप करें और खातियों में डाल दें। ऐसा करने से खातियों में कीड़े नहीं लगेंगे। खातियों के मध्य में एक छिद्रित रबड़ की नली रखें। इसका एक सिरा अदरक बीज के ऊपर होना चाहिए। खातियों का 1/4 भाग ऊपर से खाली रखें। अदरक के बीज के ऊपर सूखा मोटा घास डालें। कच्चा ढांचा बनाएं। खातियों के ऊपर लकड़ी के किनारे गोबर मिट्टी के मिश्रण से लेप कर दें। निचले पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो इन क्षेत्रों के लिए अदरक का भंडारण रेत की मोटी तह के ऊपर किसी ठंडे कमरे में आप कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों ये तो हमने बात करी अदरक की देखभाल व रोग प्रबंधन के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, अब जानकारी के बाद कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन करवाने का। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये लोकगीत।
0: जी।

0: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये मधुर सा लोकगीत। अब समय हो चला है एक जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है हिमाचल प्रदेश में लड्डू गेंदे का पौध प्रवर्धन एवं खेती। इस जानकारी पूर्ण बातचीत में भाग ले रहे हैं
1: डॉक्टर सुमन भाटिया
0: और उनसे अधिक जानकारी हासिल कर रही है सुरेखा।
2: किसान श्रोताओं, फिर हाजिर है लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस बातचीत के माध्यम से, और आज की जो जानकारी है इसका विषय है हिमाचल प्रदेश में लड्डू गेंदे का पौध प्रवर्धन एवं खेती। डॉक्टर सुमन भाटिया आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। डॉक्टर भाटिया, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर सुमन, आप लड्डू गेंदे के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसकी खेती कहाँ होती है और बाजार में इसकी मांग का स्तर क्या है।
3: बिल्कुल। तो जो लड्डू गेंदा है, यह एक गेंदे की ही एक किस्म है, और ये लड्डू गेंदा खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में इसकी खेती की जा रही है। और विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार की मिट्टी और इसकी आसान शस्य क्रियाओं के कारण इस फूल को काफ़ी किसान भाई लगा रहे हैं और फायदा भी ले रहे हैं। अगर हम बात करें जो लड्डू गेंदा है, इन फूलों का आकार बड़ा आकार है और लड्डू की तरह गोल है। इसी की वजह से जो दूसरे गेंदे की प्रजातियां हैं उसके मुकाबले ये वाला लड्डू गेंदे की मार्केट में काफ़ी डिमांड है, और दूसरे गेंदे की प्रजातियों के मुकाबले इस गेंदे का रेट भी मार्केट में काफ़ी मिल रहा है। यही कारण है कि हिमाचल के भी हमारे किसान भाई अब लड्डू गेंदे की खेती कर रहे हैं और कुछ अभी करने जा रहे हैं। और जो लड्डू गेंदा है, इसकी एक और बात है कि कुछ जैसे हमारे साउथ इंडिया में कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो इससे रंग भी निकाल रहे हैं, जैसे कैरोटीनॉइड निकाला जा रहा है जो कि पोल्ट्री फीड में डाला जाता है। पोल्ट्री फीड में जब इसको डालते हैं, इसके पंखुड़ियों को सुखा कर, तो जो अंडा है उसके जर्दा वो भी लाल रंग का हो जाता है। तो इसमें भी इसका उपयोग कर रहे हैं, पर खुले बाजार में, खुले फूलों के बाजार में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है।
2: जी, ये जो पोल्ट्री फार्म में इसके इस्तेमाल के बारे में डॉक्टर साहब आपने बताया, बहुत खास बात आपने बताई। इसके अलावा और क्या खासियतें हैं, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है?
3: खासकर अगर हम लड्डू गेंदे की ही बात कर रहे हैं तो खासकर इनके फूलों का उपयोग खुले फूलों के बाजार में ही किया जा रहा है, और कुछ फूलों को जैसे मैंने पहले बताया था कि कैरोटीनॉइड एक्सट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, पर इस वाली किस्म को हम जैसे आप कह रहे हैं कि परफ्यूमरी या उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो खासकर इसके फूलों का सर्वाधिक उपयोग मालाएँ बनाने, विवाह मंडल की सजावट करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, जैसे त्यौहार दीपावली या दशहरा, उस समय इसकी मांग और बढ़ जाती है और मांग के साथ साथ इसकी रेट भी हमारे किसान भाइयों को काफी मिल जाते हैं। तो इसको खासकर जब हम लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, तो इसका समय इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि ताकि इसके फूल दिवाली या दशहरे पे आए और हमारे किसान भाई इससे काफी लाभान्वित हो सके।
2: हमारे जो किसान हैं कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कितना रेट उनको या कितना जो कीमत है बाजार में मिल सकती है?
3: देखो, कीमत दिवाली और दशहरे में इसकी कीमत 100 रुपए से लेके 150 रुपए प्रति केजी मिल जाता है किसानों। तो एक ही पौधे से हम 1 से 1.5 किलो फूल ले सकते हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब, इसकी जितनी डिमांड है, क्या इसका जो उत्पादन है वो भी उतना ही हो रहा है या कम है?
3: अभी इसका उत्पादन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी लड्डू गेंदा का खासकर हमारे दक्षिण भारत और हमारे भारत के अलग क्षेत्रों में काफी उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी थोड़ा सा इसका उत्पादन अब लोग करने लगे हैं, हमारे किसान भाई, और कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इसका उत्पादन कर रहे हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब, आइए जानते हैं सबसे पहले कि किस तरह की मिट्टी और किस तरह की जलवायु जो है इसकी खेती के लिए उपयोगी है।
3: बिल्कुल, जो लड्डू गेंदा है और खासकर सभी गेंदे, इसका सबसे अच्छी खासियत ये है कि किसी भी तरह की जलवायु और मिट्टी में लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का मौसम जो है, सर्दियों के 2-3 महीने जैसे आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसको छोड़कर पूरे साल हम इसका उत्पादन कर सकते हैं, पूरे साल इनको खेतों में लगा सकते।
2: तो डॉक्टर सुमन, एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे अन्य फसलों पर या सब्जियों पर मौसम की मार या जलवायु का प्रभाव पड़ता है, क्या गेंदे पर भी जो है कई बार मौसम की मार या अत्यधिक धूप या बारिश का असर पड़ता है?
3: क्योंकि वैसे तो हम बोलते हैं कि गेंदा हर जगह लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मौसम ठंडा है तभी मैंने बताया था कि हिमाचल में जो हमारा खासकर जो है दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर इस समय काफ़ी ठंड होती है, तो उस समय ये पौधा अच्छे से पनप नहीं पाता है और थोड़ा सा इसके पत्ते भी थोड़े झुलस जाते हैं और पाले का बहुत ज़्यादा इस पर प्रकोप होता है। पाला अगर पड़ेगा तो पाले में भी ये पौधा मर जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण भी इसके लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही अगर वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है तब भी अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है 30 या 32 डिग्री से तब भी जो है अच्छे से ये ग्रो नहीं कर पाता है। और साथ में अगर हम बात करें अगर हम इसका खेती करना चाहते हैं तो हमें ऐसे खेतों का चयन करना पड़ेगा जहाँ पे लाइट पूरी सनलाइट आती हो
2: जी।
3: क्योंकि इसके लिए इसकी ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है।
2: अगर शिमला के आसपास के क्षेत्रों या ऊपरी क्षेत्रों में कहीं गेंदे की इस गेंदे की खासकर लड्डू गेंदे की खेती करने जा रहे हैं हमारे किसान या कर रहे हैं तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि पाले के प्रकोप से कैसे बचाएं?
3: देखो इसमें तो यही है कि हमारे किसान भाइयों को पता ही है कि जो गेंदा है ये खासकर आपका सीजनल पौधा है, मौसमी फूल है, ये 6 या 7 महीने में ये मर जाएगा। जैसे खासकर जब हम इस पौधे को लगाते हैं तो 2.5-3 महीने के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और 5-6 महीने बाद ये पौधा मर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ठंड है तो वहाँ हम अप्रैल में जब ठंड खत्म हो जाती है तो अप्रैल में इसका रोपण करते हैं और अप्रैल से मई तक कर सकते हैं, उसके बाद जब मौसम ठंडा हो जाएगा उस समय फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो अप्रैल से मई तक हम यहाँ पे हमारे ठंडे इलाकों में वहाँ पे इस तरह से ये वाले समय में हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। और साथ ही जो लड्डू गेंदा है इसको हरित गृह में भी लगाया जा सकता है। हरित गृह में लगाने से पाले का प्रकोप कम हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो फिर भी इसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हरित गृह में भी लगाया जा सकता है इसको
2: जी। तो अगर हमारे किसान हैं विपरीत परिस्थितियों में इसकी खेती या प्रवर्धन करना चाहते हैं तो हरित गृह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा अब इसके बाद हम बात करेंगे जब फूल इसमें आ जाते हैं तो कौन से समय में इसकी तुड़ाई करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, या अधखुली कलियों को ही तोड़ दें या पूर्ण विकसित फूल को तो हम तोड़ सकते हैं?
3: बिल्कुल मैं आपका इसका जवाब भी दूंगी पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी किसान भाइयों

0: इसके प्रवर्धन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया ये कर्तनों द्वारा तैयार किया जाता है, और खासकर अब सर्दियों में तो पौधा मर जाएगा,
1: जी
0: तो फिर हमारे हिमाचल के किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मुश्किल जो आ रही है इसकी खेती की कि पौधे किस तरह से मिले। तो हर बार जो है किसान भाइयों को इसके पौधे या तो आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया से कलकत्ता से मंगवाते हैं हर साल, तो जिसकी वजह से जो है हमारे किसान भाई इस प्रजाति को कम लगाते हैं और दूसरी प्रजातियां ज्यादा लगा रहे हैं। तो हमने अपने फ्लोरिकल्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है नौनी यूनिवर्सिटी में, हमने एक प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने यह किसानों के लिए एक तकनीक अपनाई कि अगर हम किसान भाई अगर ऐसा करें कि अक्टूबर में इन पौधों को पॉली हाउस में बचा दें, थोड़ा सा टेम्परेचर को ठीक रखें और पॉली हाउस में बचा दें, फरवरी तक उसको हम पॉली हाउस में लगा देते हैं, उस पौधे को लगाते ही हम सितंबर अक्टूबर में,
1: जी
0: और उनके जनक पौधों को लगाते हैं और उन जनक पौधों में फूल नहीं देते हैं, उसको सिर्फ वेजिटेटिव ग्रो करते हैं,
1: जी
0: और उसके बाद जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में उसमें से फिर हम कटिंगें लेते हैं। तो मीन्स अब किसान भाई अपने ही खेतों में अपने ही पास इसकी कटिंगों को तैयार कर सकते हैं, नहीं तो हर बार किसान भाइयों को ये बाहर से मंगवाना पड़ता था हर साल। और फिर आपने जो मुझसे पूछा कि इस तरह इसकी कटाई कैसे की जाती है फूलों की, तो जब हम इस पौधे को लगाते हैं तो 2.5 या 3 महीने के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है, और जो फूलों की तुड़ाई है खासकर जब ये पूरा खिल जाता है फूल उस समय इसकी तुड़ाई करते हैं, या तो सुबह के समय करते हैं जब थोड़ा सा तापमान कम हो, या शाम के टाइम पे इसकी तुड़ाई करते हैं। और इससे पहले जब हम तुड़ाई करते हैं, जैसे आज हमने तुड़ाई करनी है, तो पिछले दिन शाम को सिंचाई करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो फूल है वो फ्रेश रह सके और उसको हम मार्केट तक पहुंचा सके।
1: जी देखिए, तुड़ाई हो गई है, अगर हमारे किसानों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए इनको सुरक्षित रखना हो तो कौन सा तरीका या कौन सी तकनीक बढ़िया रहती है?
0: अब जैसे हमने तुड़ाई की तो हमारे किसान भाई खासकर तो जो आपके बोरी होती है उसमें भी इसको पैक करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अब हमने नई तकनीकें अपना ली हैं, तो जैसे बॉक्स जो होते हैं आपके कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, तो उन बॉक्सेस में हम पैक कर सकते हैं और आराम से ये आपका 5 या 6 दिन तक मार्केट तक पहुंचाने, 5 से 6 दिन ये आराम से रुक जाता है, तो इसकी बहुत अच्छी लाइफ है, 5 से 6 दिन ये बिल्कुल आराम से आप पैक करके इसको मार्केट में पहुंचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि दूसरी फसलें हैं या दूसरे कोई भी आप फल सब्जियां लगाएं, तो सभी में समय समय पर मौसम के अनुसार रोग और कीट विकसित होते रहते हैं, तो लड्डू गेंदा में कौन कौन से रोगों का प्रकोप रहता है?
0: वैसे तो मैं आपको बताऊं कि गेंदे में कोई भी गेंदा किस्म हो किसी की, वैसे तो गेंदे में बहुत कम बीमारियां आती हैं,
1: जी
0: तो अगर हम बात करते हैं तो लड्डू गेंदे में खासकर जब बरसातें, जैसे हमने जून जुलाई में इसकी पौधा रोपण किया है, तो बरसातों में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको जिसमें पत्ते पर जो है धब्बे पड़ जाते हैं, काले रंग के धब्बे, जो कि अल्टरनेरिया एक बीमारी है, उसकी वजह से धब्बे पड़ते हैं, तो वो जो है सिर्फ यही एक बीमारी है जो खासकर इसमें आती है। रोकथाम के लिए यही किया जा सकता है कि हम जो है पौधे के नीचे के पत्ते जो काले जिस पे काले धब्बे आ गए वो निकाल दें और
1: जी
0: इनको निकाल के फेंक दें,
1: जी
0: या फिर कोई फंजीसाइड है, फंजीसाइड की स्प्रे कर सकते हैं हम इस पर।
1: तो डॉक्टर साहब, गेंदे के बारे में आपने, खासकर लड्डू गेंदे के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, कोई खास सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे युवा किसान श्रोताओं को जो कि घर पर बैठकर ही व्यावसायिक खेती बाड़ी करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं है कि क्या किया जाए?
0: और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो युवा है, अगर हम बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की, फूलों के जैसे आपके कार्नेशन है या बहुत सारे फूल हैं हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन जो गेंदा है, मैं यह कहूंगी कि गेंदा एक ऐसा फूल है कि अगर आप फूलों की खेती की तरफ जाना चाहते हैं तो गेंदा सबसे पहला नर्सरी है आपके फूलों की खेती की, कि
1: जी
0: अगर आपको गेंदा लगाना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्योंकि गेंदा लगाना बहुत आसान है। और अगर गेंदे की, अगर हम लड्डू गेंदे की बात करते हैं, तो जो है आपकी कर्तनों से तैयार होता है, या फिर दूसरे गेंदे की प्रजातियां जो बीजों द्वारा तैयार होती है, तो इसके शस्य की राय बहुत आसान है, इसको तापमान किसी भी आपकी मिट्टी या जलवायु इसके आराम से ये हर जगह लगता है, तो आसानी से लगाया जा सकता है गेंदा, और इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। जैसे हमारे यहाँ पर देखें आप, जैसे दिवाली, दशहरा या कोई भी फेस्टिवल इवन, शादियां वगैरह हैं, तो गेंदे की हमेशा ही डिमांड बनी रहती है, नवरात्रों में तो इसके रेट्स काफी बढ़ जाते हैं, तो इसमें कोई भी लॉस नहीं है, अगर आपके पास छोटी सी जमीन है, छोटा सा खेत है, तो आप गेंदा लगाकर आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारे किसान जो हैं अपने आसपास की मंडियों में या मंदिरों में भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश या हमारा देश जो है त्योहारों का देश है, तो ऐसे में जो है इसमें घाटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर सुमन भाटिया स्टूडियो में आने के लिए इतने विस्तृत

0: जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनिए जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था हिमाचल प्रदेश में लड्डू गेंदे का पौध प्रवर्धन एवं खेती। तो किसान भाइयों, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन करवाने का।
3: तो आइए किसान बागवान श्रोताओं, हम और आप सुनते हैं कृतिका तन्मर की आवाज में ये लोकगीत।

ये तो सुना आपने लोकगीत। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों के बारे में भी। किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है मिट्टी परीक्षण क्यों है जरूरी। साथ ही करवाएंगे मनोरंजन लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण

0: बातचीत का पुनः प्रसारण भी विषय रहेगा, खुम्ब उत्पादन के लिए खाद बनाना और फसल उगाना।
1: अगले अंक में नए विषय पर ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए,
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जो कि आकाशवाणी के शिमला के केंद्रों से रिले किया गया FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में हवाई संपर्क व विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, किताबघरों से प्रदेश के रचनाकारों को मिलेगा व्यापक पाठक वर्ग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और तालाबंदी की नीयत से आगे बढ़ रही है सुक्खू सरकार। चंबा किलाड़ मार्ग को रक्षा मंत्रालय से मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा। निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र के अधीन। और कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु, 1 घायल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में हवाई संपर्क व विमान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में राज्य सरकार, भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किए गए इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से मौजूदा व नई उड़ान हवाई सेवाओं, पात्र विमानन अवसंरचना के विकास और संचालन के लिए सहयोग का एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। ये समझौता 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। इस व्यवस्था के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यानी VGF का 20% योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि 80% केंद्र सरकार वहन करेगी। पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव संदीप कुमार ने बताया कि बेहतर हवाई संपर्क से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित

0: रुखू सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और तालाबंदी की नीयत के साथ आगे बढ़ रही है। कांगड़ा जिला के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हर जगह तालाबंदी नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी विकास कार्य ठप है और हर तरफ अराजकता व बदहाली का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पूर्व भाजपा सरकार द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थी और राज्य सरकार को केवल 30 करोड़ रुपए जमा करने हैं, जिसे वो जमा नहीं कर रही है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाने के आह्वान के बारे में। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें, खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती माँ को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
2: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। रक्षा मंत्रालय ने 11 सड़क परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें चंबा किलाड़, खानागुंती, लामखागा दर्रा, हरसिल और वांगतू मुड अट्टरगू सड़क परियोजनाएं प्राथमिकता 2 की सूची में शामिल हैं। हर्ष महाजन ने बताया कि चंबा के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले चंबा किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक परियोजना का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन परियोजनाओं के विकास व रखरखाव की व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जाएगी। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चंबा जिला के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण सौगात है। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा किलाड़ मार्ग चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। हर्ष महाजन ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का आभार जताया है। कुल्लू जिला में आनी उपमंडल के हरिपुर नागन क्षेत्र में आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। घायल को उपचार के लिए रामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी व्यक्ति बड़ागांव से एक विवाह समारोह से वापस घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान

0: आबोगांव की राहुल राणा, बालकृष्ण, विकास और गुंजन के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया और मृतकों के परिजनों को 25-25 हज़ार रुपये की फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सिरमौर जिला में नाहन शहर के वार्ड नंबर 5 में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें आधुनिक तरीके से पानी की सप्लाई पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नाहन शहर के 3 प्रमुख स्टोरेज टैंकों का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है। राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत चल रहे इस कार्य को मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: हमारे 3 टैंक थे जहां वर्किंग स्पेस बहुत मिनिमम थी, में काफी लीकेज है, टैंकों को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके साथ जो नई पाइपलाइन है वो भी बिछने जा रही है। ये अमृत के माध्यम से जो हमें पैसे मिले थे नान वाटर सप्लाई के, इसके तहत हम एक वार्ड को मॉडर्नाइज करेंगे। इस वार्ड को हम IoT के, अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ेंगे। पायलट बेसिस पे होगा, अगर हमें वहां सक्सेस मिलती है बाकी वार्ड्स में भी हम इसको लेके जाएंगे।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से ही एक बेहतर, सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण संभव है। बिलासपुर जिला की PM श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में आयोजित विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। धर्माणी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझने सहित उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना है। राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से मोबाइल फोन का सकारात्मक उपयोग कर इसे ज्ञानवर्धन, अधिगम और आत्मविकास का माध्यम बनाने का आह्वान भी किया। भारत विकास परिषद द्वारा नाहन में भारत को जानो कार्यक्रम के तहत समूहगान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के नाहन शाखा के अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों में ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और देश की समृद्ध विरासत से परिचित करवाना रहा। यशपाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है।
2: भारत को जानो के संदर्भ में हिंदी समूह गान प्रतियोगिता, संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी आयोजित किया गया है। ये भारत को जानो कि हमारे भारत वर्ष की क्या संस्कृति है, क्या सामाजिक स्तर में हम अपने हिंदी भाषा को कैसे आगे करें, हर वर्ष आयोजन कराते रहेंगे ताकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हवाई संपर्क व विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित, राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा किताबघरों से प्रदेश के रचनाकारों को मिलेगा व्यापक पाठक वर्ग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और तालाबंदी की नीयत से आगे बढ़ रही है सुक्खू सरकार। चंबा किलाड़ मार्ग को रक्षा मंत्रालय से मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा, निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र के अधीन। और कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु, 1 घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं विशेष सूचना। नवोदय विद्यालय समिति, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, से प्राप्त सूचना के अनुसार सेशन 2027-28 के लिए 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की रिक्त या खाली पड़ी सीटों को भरा जाना है और इसके लिए विद्यार्थी कक्षाओं की रिक्त सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को

0: रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए लिंक इस प्रकार है। क्लास 9 के लिए लिंक इस प्रकार है https://cbscitms.nic.in/2026/nvsix9 और कक्षा 11th के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvxi11। प्रॉस्पेक्टस भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ही उपलब्ध है और इन एप्लीकेशंस या फॉर्म्स को भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 और सिलेक्शन टेस्ट 10 अप्रैल 2027 को होना तय है। अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति B15 सेक्टर 62 गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश 20309 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारे श्रोता जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको संगीत के सभी रंगों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गज़ल के साथ।

अभी आपने सुनी आशा भोसले की आवाज़ में गाई ये गज़ल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सवरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं इलारून की आवाज़ में गाया ये गैर फिल्मी गीत।

अभी आपने सुना इलारून की आवाज में गाया ये गैर फिल्मी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पंजाबी गीत सरबजीत चीमा की आवाज में।

अभी आपने सुना सरबजीत चीमा की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अलीशा चिनोई की आवाज में।

अभी आपने सुना दलेर मेहंदी, अलका याग्निक व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति कर्ण औजला की आवाज़ में।

कर्ण औजला की आवाज़ में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर, मनहर उद्दास और हेमा की आवाज़ों में ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना उदित नारायण व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहली समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफ

0: इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत

0: से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में, और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं, और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर

0: ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Center inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
3: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. आज हम एकता नगर, जहां सरदार साहब की world's tallest statue है, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार we'll go to one more important destination. I am giving a call to all the states and union territories. Select one of the most important tourist destinations in your state. Tell us what improvements you'll make in it. Your destination will be selected and we'll

जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं गायक महेंद्र कपूर द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत, कार्यक्रम एक ही कलाकार की कड़ी में। श्रोताओं, महेंद्र कपूर का जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन वे जल्द ही जो है वो मुंबई आ गए थे और इन्होंने कम उम्र में ही वे दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी से प्रेरित हुए और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। उन्होंने पंडित हसन लाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा जैसे शास्त्रीय गायकों से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। कपूर ने रफ़ी से प्रेरित होकर अपनी एक अनूठी शैली विकसित की और मेट्रो मर्फी अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता जीती।

महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सन 1972 में पद्मश्री सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1968 में जीता उपकार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार, 1964 में जीता गुमराह फिल्म के लिए, 1968 में जीता हमराज फिल्म के लिए, 1968 में ये उपकार फिल्म के लिए भी नामांकित हुए, 1975 में जीता रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के लिए महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, सॉन्ग कड़ी कलनार तुला गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता, अंजनी चियासुता गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता, 1967 में मियाँ

तानसेन पुरस्कार सती नारी तुम नाचो रस बरसे इस गीत के लिए जीता। 2000 में न्यूयॉर्क में आयोजित बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार भी इन्होंने जीता। 2008 में महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। महेंद्र कपूर गायकों के बड़ी दिग्गज श्रेणी में गिने जाते थे। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी, जैसे धूल का फूल, नवरंग, गुमराह, वो कौन थी, हर दिल जो प्यार करेगा, संगम, मेरा प्यार वो है, ये रात फिर ना आएगी, बदल जाए अगर माली, बहारें फिर भी आएंगी, आए दिन बहार के, किसी पत्थर की मूरत से, हमराज फिल्म के लगभग सभी गीत इन्होंने गाए, और उपकार फिल्म, किस्मत गीत, यादगार, पूरब और पश्चिम, गोपी, धुंध, रोटी कपड़ा और मकान, फकीरा, क्रांति, संबंध, निकाह, काफ़ी सारी फिल्में जो बॉलीवुड की थी उसमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज आपने सुने गायक महेंद्र कपूर द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब से एक घंटे तक मैं रहूंगी आपके साथ और आज मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपके लिए लेकर आई हूं ये लोकगीत जिसे गाया है तरसेम पाल ने।

अभी आपने सुना तरसेम पाल की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता परमार की आवाज़ में गाया कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना अनीता परमार की आवाज में गाया कार्यक्रम का ये लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विद्या देवी की आवाज में धाम गीतांदी कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना विद्या देवी की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

अभी आपने सुना पिंको देवी की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं नसीम बाला की आवाज़ में गाया कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना मान सिंह की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश कुमार की आवाज़ में गाया कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना राकेश कुमार की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दे इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कौशल्या देवी की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना कौशल्या देवी की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। अब लीजिए सुनिए पवन डोगरा की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

सुरेश वर्मा की आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का धाम गीतांदी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना उपकार फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना गुलशन बावरा की थी और संगीत यह था कल्याण जी आनंद जी ने। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हाथी मेरे साथी फिल्म से।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में।

अभी आपने सुना गोलमाल फिल्म का यह गीत। शब्द रचना गुलजार की थी और संगीत यह था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना डॉन फिल्म से यह गीत जिसे गाया था किशोर कुमार लता मंगेशकर ने। कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर मनहर उदास के युगल स्वरों को फिल्म हीरो में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जहरीला इंसान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत